92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह तोहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहा सारे ई बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन दी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
4: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे? अरे

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पेंशनरों को 15 से 35%, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को इसी माह 20,000 एरियर। विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से होगा शुरू, 900 से अधिक सवाल पहुंचे धर्मशाला में, स्थापित होगा प्रदेश का पहला रिमोट सेंसिंग केंद्र। पटोला मैदान बनेगा फुटबॉल स्टेडियम। अब समाचार विस्तार से।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विकास की सौगातें देते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लिए आज 27 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। उन्होंने संयुक्त कार्यालय भवन नेरवा जिला शिमला के लिए 2 करोड़, संयुक्त कार्यालय भवन चौपाल के लिए 3 करोड़, संयुक्त कार्यालय भवन कुपवी के लिए 2 करोड़, दुग्ध अभिषेकन संयंत्र नेरवा के लिए 2 करोड़, नेरवा बाईपास के लिए 4 करोड़, लखावटी पुल के लिए 12 करोड़ तथा छवाला चौपाल जलापूर्ति योजना के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता रजनीश किमटा, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा तथा चौपाल नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष चंद्र मोहन ने चौपाल क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं को समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी, लोग इन परियोजनाओं का लाभ उठाकर धन एवं समय में बचत कर पाएंगे तथा उनका रहन सहन सुगम होगा। 2. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की 25 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का मंडी के पड्डल मैदान से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने HRTC के इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार के लिए नई 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की है। नई इलेक्ट्रिक बसें वर्तमान में शिमला, नाहन, नालागढ़, ऊना, हरोली, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, पलमपुर, धर्मशाला तथा नगरोटा में संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू, मंडी और सुंदरनगर में भी आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना विकसित की जा चुकी है तथा इन क्षेत्रों में नई इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का संचालन भी शुरू किया गया है। श्री सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से HRTC की परिचालन लागत में भी महत्वपूर्ण कमी आ रही है। पारंपरिक डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ऊर्जा लागत में लगभग 12-13 रुपए प्रति किलोमीटर की बचत हो रही है। इससे निगम के ईंधन एवं परिचालन व्यय में कमी आने के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की समग्र दक्षता में भी सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का ये विस्तार प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन कम करने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने तथा स्वच्छ एवं हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के निरंतर सहयोग तथा चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के साथ HRTC राज्य में आधुनिक, विश्वसनीय, ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। 3. सर्वसाधारण व जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 1250 KVA रक्कड़ बल्ला, 2250 KVA दरुनी माता, 3100 KVA फतेहपुर -44250 KVA सिद्धबड़ी 4 आदि ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों रक्कड़, दरुनी माता मंदिर के आसपास, परमार हाउस के पास, पीती हॉस्टल, गुरुद्वारा रोड आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पुनर्तः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित में करना बहुत आवश्यक है। 4. वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मियों और पारिवारिक पेंशनरों को नया वेतनमान लागू होने के बाद संशोधित पेंशन के एरियर का अतिरिक्त 35% इसी माह भुगतान किया जाएगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी 15% एरियर मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी माह संशोधित वेतनमान के एरियर के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपये सैलरी के साथ मिलेंगे। इस पर सरकार 281 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे। सीएम ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी नीति बनाने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 100 और CBSE स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक कोई भी चिकित्सक सेवानिवृत्त नहीं होगा। 5. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक चलेगा। 14वीं विधानसभा का ये 11वां सत्र होगा। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय में अब तक विधायकों के 900 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं। विधायक 18 अगस्त तक अपने प्रश्न भेज सकेंगे। प्राप्त प्रश्नों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके जवाब तैयार करवाए जा रहे हैं। मंत्री इन प्रश्नों पर प्रश्नकाल में जवाब देंगे। प्रश्नों में भाजपा और कांग्रेस दोनों विधायकों के सवाल शामिल हैं। 6. राज्य का पहला रिमोट सेंसिंग एवं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम केंद्र धर्मशाला में करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो.
चंद्र कुमार ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित होने वाले इस हाईटेक केंद्र के जरिए प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। केंद्र के माध्यम से मौसम, भूमि, फसल और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। ये डेटा विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनेगी। साथ महान स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर की स्मृति में खनियारा के पटोला मैदान में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को समापन हुआ। रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंदुनाग फुटबॉल अकादमी खनियारा ने शाहपुर की टीम को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विजेता टीम को 11,000 रूपए ट्रॉफी तथा सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह, जबकि उपविजेता टीम को 9,000 रूपए उपविजेता ट्रॉफी तथा सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर विधायक सुधीर शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रवीण प्रकाश के आग्रह पर क्षेत्रवासियों और खिलाड़ियों के हित में 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पटोला मैदान को फुटबॉल स्टेडियम के रूप में विकसित करने, दर्शकों के बैठने के लिए मैदान में कैनोपी, पूर्व निर्मित ढांचा स्थापित करने तथा टूर्नामेंट आयोजन समिति को 50,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। पटोला मैदान को खेल सुविधाओं से विकसित किए जाने से खनियारा और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को लाभ मिलेगा तथा फुटबॉल को नई पहचान और नई ऊंचाइयां हासिल

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल की।
3: जीवन उसकी पानी।
2: उसका
3: पापा पापा दूध उबल रही है।
4: उबल रहा है, रहा।
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
3: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
2: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
4: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
3: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: क्या देना? नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए। देखो
12: शुक्ला जी, वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
14: वही असली तरक्की।
13: एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं।
16: आपको भी अगर कपड़े पहनने के लिए हाथ
15: बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
17: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
15: मैं तो बुरी।

दोस्तों, सभ्यता और संस्कार किसी किताब से नहीं सीखे जाते, ये तो परिवार की परवरिश, बड़ों के सम्मान और हमारे व्यवहार से झलकते हैं। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या फिर दौलत से नहीं, बल्कि उसके शब्दों, व्यवहार और संस्कारों से होती है। क्योंकि अच्छी शक्ल कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन अच्छे संस्कार हमेशा दिल में जगह बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है आप सभी का बेहद खूबसूरत सा मीठा सा कार्यक्रम लेकर। गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बेहद अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। जी दोस्तों, ऐसे बदलते मौसम के साथ हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आज 18 अगस्त 2026 का दिन, मंगलवार का दिन, तो सुबह की शुरुआत तो आप सभी की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी, एक नए पल के साथ, एक नई शुरुआत के साथ शुरू हो चुकी है। तो आइए दिन को खूबसूरत बनाते हैं, प्यारा बनाते हैं, इंजॉय से भरते हैं। और वैसे भी सावन का महीना आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना दोस्तों, अलग अलग तरीक़ों से। जो कि संक्रांति से मना रहे थे उनके लिए तो पूरा हो गया, लेकिन जो 30 जुलाई से जिन्होंने शुरू किया था उनके लिए अभी बाकी है। तो बिल्कुल दोस्तों, अपनी अपनी आस्था, अपने अपने भक्ति को दर्शाने का एक अलग अलग तरीका शिव भोले के लिए अर्पित है ये सावन का महीना।

जी दोस्तों, तो बहुत ही प्यारी सी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत भी शिव भोले के नाम से हो गई है। जी दोस्तों, कहते हैं ना, मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। हर मुश्किल आसान लगती है, हर चुनौती आसान लगती है। खैर दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का ये सफर आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप जानकारियां आप सभी तक पहुंचने वाली हैं, ढेर सारी, और साथ ही साथ रुचिका की ढेर सारी बातें भी। तो फिलहाल आप सभी को लेकर चलते हैं दोस्तों मौसम की अपडेट की ओर। तो इस समय धर्मशाला के तापमान की हम बात करें दोस्तों, तो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी महसूस कर सकते हैं। और इसी के साथ मौसम विभाग के अनुसार किस तरह से हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है,

ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, प्रदेश में मानसून एक बार फिर से तेवर दिखाने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 18 अगस्त को यानी कि आज प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 19, 20 और 21 अगस्त को भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 22, 23 के लिए इस तरह की कोई चेतावनी फिलहाल नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे पल आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, अपडेट बदलती जाती है, तो हमें हर पल खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। भूलिएगा नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम है और जरा सी भी हमारी जानकारियों की तरफ से नज़र हटी और पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे सामने आ जाए। तो इसीलिए खुद की सेफ्टी के लिए हमें सावधान रहना हर पल जरूरी है। तो ये तो थी मौसम की अपडेट, और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं मनोरंजन के और। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों 91.1 एफएम ओमेगा हर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। बहुत ही प्यारा सा ये गीत उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया और अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से। जी दोस्तों, सुबह भी होगी शाम भी होगी, हर पल बीतता जाएगा, दिन गुजरते जाएंगे। कभी देखा है किसी ने किसी पल को ठहरते हुए? फिर हम क्यों ठहर जाते हैं किसी बुरी बात को लेकर एक ही जगह में, या उस बात को लेकर पूरी जिंदगी भर परेशान होते रहते हैं? तो वो परेशान होना भी यही जताता है दोस्तों कि हम उस पल में ठहर चुके हैं, रुक चुके हैं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों? जब समय नहीं रुकता किसी के लिए तो हम क्यों रुके हैं? जिंदगी है और जिंदगी को जीना भी पड़ेगा जब तक जान है, तो क्यों ऐसे बोझ लेकर परेशान होकर इस जिंदगी के कीमती समय को बर्बाद किया जाए? खुशी खुशी एंजॉय किया जाए, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे। ऐसे तो हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि काश ये जिंदगी यहीं खत्म हो जाए, यहीं थम जाए, लेकिन जब वो वक्त नजदीक आता है तब मन करता है कि यार अभी तो बहुत कुछ जीना बाकी था जिंदगी में, बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी सी रह गई, काश थोड़ा वक्त और मिल जाता। होता है ना ऐसा? जी दोस्तों, तो यही है जिंदगी का एक चक्रव्यूह। तो जो समय आपके पास है उसकी कीमत कीजिए, समझिए, वैल्यू कीजिए और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। और इसी के साथ दोस्तों, आज 18 अगस्त 2026 का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पुण्यतिथि जो है वो मनाई जाती है। जी दोस्तों, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हुआ था। तो आज का दिन हुआ ना खास दोस्तों, क्योंकि ये प्रेरणादायक जो जिंदगी की कहानियां होती है ना, हमें कहीं ना कहीं टूटने से बचाती हैं, बिखरने से बचाती हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये बातचीत का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन रुचिका की बातों से हटकर थोड़ा सा समय है जानकारियों की ओर जाने का। जी दोस्तों, 9:20 होने को हैं और आप सभी को लेकर चलेंगे प्रादेशिक समाचारों की ओर, क्योंकि हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, कुछ खास जानकारियां। तो आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत प्रदेश में 2 औद्योगिक पार्कों सहित आधारभूत ढांचा विकसित करने की केंद्र से की मांग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बिलासपुर के मंडी भराड़ी में करीब 2.5 करोड़ रुपए से बन रहे आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से मंडी के जोगिंदरनगर में 114 परिवारों को मिले पक्के मकान। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जल्द ही AI, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक, ड्रोन तकनीक जैसे आधुनिक विषय होंगे शुरू। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता जारी, आज 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत औद्योगिक विकास योजना के पहले चरण के तहत प्रदेश में 2 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी देने और औद्योगिक विस्तार के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित करने की केंद्र सरकार से मांग की है। मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की बैठक में शिमला से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आधुनिक आधारभूत संरचना, निवेशक अनुकूल नीतियों के माध्यम से एक सुदृढ़ औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने पर भी बल दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और बद्दी नालागढ़ रेल लाइन के विस्तार का भी आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बिलासपुर के मंडी भराड़ी में निर्माणाधीन आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण कार्य को समयबद्ध पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कल इसके निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मंडी भराड़ी में आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण कार्य के लिए सरकार ने लगभग 2,44,00,000 रुपये की धनराशि जारी की है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन शोघी का निर्माण कार्य आगामी 9 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और केंद्र में ट्रामा सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर मरीज को त्वरित स्वास्थ्य उपचार मिल सके। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने शोघी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर कल प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और उपायुक्तों के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भेजा। शिमला में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री यशपाल हेटा ने बताया कि प्रदेश भर में श्रमिक महंगाई बेरोजगारी आउटसोर्स व्यवस्था से प्रभावित है।
2: जो हमारी 11 इशू पे पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला। इशू है कि जो देश में मिनिमम जो न्यूनतम वेतन है काफी सालों से 18,000 चल रहा है। भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि देश में कम से कम 1,000 रुपया दिन की मजदूरी होनी चाहिए वर्करों की। न्यूनतम वेतन है वो 30,000 रुपये मासिक होना चाहिए। प्रदेश सरकार को हमने 2024 से लगातार हम 24 सूत्र मांग पर तीन ज्ञापन के माध्यम से भेज रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। कर्मचारी अपना डीए मांग रहा है, 2016 से अपना एरियर मांग रहा है और जिन निगम और बोर्ड में ओपीएस नहीं है उसमें ओपीएस मांग रहा है, आउटसोर्स के लिए पॉलिसी मांग रहे हैं।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। जोगिंदरनगर क्षेत्र में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अपने पक्के घर का सपना साकार करने का जरिया बनी है। वर्ष 2023 से 2026 के बीच योजना के तहत 114 पात्र परिवारों को 1.5-1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: मंडी जिला के जोगिंदरनगर क्षेत्र में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 114 पात्र परिवारों को 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इससे कई परिवार कच्चे मकानों से निकलकर सुरक्षित और पक्के घरों में पहुंच सके हैं। योजना का लाभ पाने वालों में 109 अनुसूचित जाति, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग और 2 अनुसूचित जनजाति के परिवार शामिल है। हार गुनैन गाँव के लाभार्थी रण सिंह बताते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन योजना के तहत मिली सहायता से उनका अब सपना पूरा हो गया है। वहीं आरठी गाँव के सुखदेव ने भी बताया कि सरकारी मदद से उनका परिवार कच्चे मकान से पक्के घर में पहुंच सका है। तहसील कल्याण अधिकारी जोगिंदरनगर के अनुसार योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आवास की सुविधा देकर उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जल्द ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग और स्पोर्ट्स साइंस जैसे आधुनिक विषय शुरू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में आयोजित उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य की नई तकनीकों और बदलती वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश भी दिए। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। आज सुबह से ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। सिरमौर जिला में लगातार हो रही बारिश से गिरी जतौन बांध में जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते बांध से सुबह से पानी छोड़ा जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदी के साथ लगते क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। मौसम पर विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
4: हिमाचल प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बीती रात से ही बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रदेश में 87 सड़कें यातायात के लिए अभी भी अवरुद्ध हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में घटेगा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का कैडर। दिव्य हिमाचल के शब्द है, अफसरों के पदों पर चलेगी कैंची, 153 से घटाकर 130 किए जाएंगे आईएएस। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, अफसरशाही के काडर में कटौती से बचेंगे सालाना 200 करोड़ रुपए। दैनिक जागरण ने खबर दी है, हाईकोर्ट ने सीएसआर फंड में अनियमितताओं पर दोनों सरकारों से मांगा हलफनामा, कहा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल जवाबदेही से नहीं बच सकते केंद्र और राज्य सरकार। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, मानसून फिर सक्रिय, बिलासपुर, सिरमौर, कांगड़ा व मंडी में आज भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब केसरी की सुर्खी है, चंबा के बलोठ में बादल फटने से पुल बहा, 50 श्रद्धालु सुरक्षित निकाले। आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और छात्र अनुकूल बनाते हुए विभिन्न कक्षाओं के संशोधित आदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि ये संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत प्रदेश में 2 औद्योगिक पार्कों सहित आधारभूत ढांचा विकसित करने की केंद्र सरकार से की मांग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बिलासपुर के मंडी भराड़ी में करीब 2.5 करोड़ से बन रहे आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण जल्द पूरा करने के

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से मंडी के जोगिंदरनगर में 114 परिवारों को मिले पक्के मकान। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जल्द ही AI, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक, ड्रोन तकनीक जैसी आधुनिक विषय होंगे शुरू। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी, आज 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं जी दोस्तों। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे की ओर। जिस तरह से हर दिन कुछ खास बातचीत आप सभी के लिए रहती है कार्यक्रम में, उसी तरह से दोस्तों आज के कार्यक्रम में भी बहुत ही खास बातचीत आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो केवल सरकारी दफ्तरों, बड़ी संस्थाओं या फिर व्यवस्था तक सीमित नहीं है। ये बात हमारे घरों, हमारे व्यवहार, हमारी सोच और कई बार हमारी छोटी छोटी सी आदतों से भी जुड़ा रहता है, जो हमारे समाज में अक्सर गलत बढ़ता जा रहा है। एक तरह से चाहे वो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो लड़कों के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो बुजुर्गों के साथ गलत हो रहा है, किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ जो है अन्याय, या एक तरह से कह सकते हैं हम कि भ्रष्टाचार जो है वो फैलता जा रहा है। तो उसी पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और अक्सर आप सभी ने सुना भी होगा, एक कहावत जो है वो सुनी होगी, कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर जो है वो पसारने चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कहने सुनने तक सीमित रह जाती है, अक्सर जिंदगी में अप्लाई करने की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। जब हमारी इच्छाएं हमारी जरूरतों से बड़ी हो जाती हैं, जब सुविधाओं की चाहत सीमाओं को पार कर जाती है, जब हम अपने अधिकार तो याद रखते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं, और जब हम दूसरों की गलती को बहुत बड़ा लेकिन अपनी गलती को बहुत छोटा मानने लगते हैं, तब यहीं से जन्म लेती है एक ऐसी प्रवृत्ति जो धीरे धीरे व्यक्ति, समाज और व्यवस्था तीनों को प्रभावित करती है। तो इस बहुत ही खास बातचीत आप सभी सुनने वाले हैं इसको अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़कर जी दोस्तों। तो बने रहिए और एंजॉय करते रहिए कार्यक्रम के इस खास बातचीत को। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी का सफर है और ये तो अभी बहुत दूर तक जाना है, तो कैसे हार मान सकते हैं। हिम्मत बनाए रखिए और जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते जाइए। लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और अब आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के उचित रखरखाव हेतु 250 केवीए रक्कड़ बल्ला, 250 केवीए दरूनी माता, 100 केवी फतेहपुर 4 तथा 250 केवी सिद्धबाड़ी 4 आधी ट्रांसफार्मरों के तहत आने वाले क्षेत्रों रक्कड़, दरूनी माता मंदिर के आसपास, परमार हाउस के पास, स्पीति हॉस्टल, गुरुद्वारा रोड आदि क्षेत्रों में 19 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से शाम कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है। जी दोस्तों, तो यानी कि कल 19 अगस्त को जो है विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी और आप सभी को बता दें कि कौन कौन से क्षेत्रों में आप जो है वो बाधित रहने वाली है। तो आप आज जो है बिजली से संबंधित, जो कि सुबह सुबह हड़बड़ी में हम फिर सारे काम जो है वो उथल पुथल कर देते हैं, तो पहले पहले आराम से कर लीजिए। और हो सकता है मौसम खराब हो तो ना भी हो, लेकिन हाँ, पहले से प्रेपरेशन, पहले से तैयार रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

दोस्तों फागुनी पाठक की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आई दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को भी बढ़ाते हैं आगे की ओर। दोस्तों तो आज 18 अगस्त 2026 का दिन बहुत ही खास दिन। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम दो विशेष बातचीत कर रहे हैं।

सदन जय हिंद, जो आज भी भारत की एकता, गर्व और देश प्रेम की पहचान है, उसे कैसे हम भूल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं प्यारे से शब्दों में और उनकी याद में एक प्यारा सा देशभक्ति गीत आप सभी के लिए।

बिल्कुल दोस्तों, 15 अगस्त को आप सभी ने आज़ादी का दिन बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया। भले ही हम एक दिन उसे सेलिब्रेट करते हैं आज़ादी के लिए कि हमें उस दिन आज़ादी मिली थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस दिन तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष, कितनी चुनौतियां और कितनों ने अपनी जान गंवाई होगी। तो वो तो पता नहीं कितने दिनों की बात है ना, तो सिर्फ हम उसे एक दिन तक सीमित कैसे रख सकते हैं। वो तो हमारे लिए हर दिन खास है। आज़ादी जो कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, अपनी मन मर्जी से जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो कहीं भी कुछ किसी भी तरह की बात हम ले रहे हैं। तो कहने को तो है चीजें अभी भी सामने, लेकिन हाँ, पहले के अकॉर्डिंग तो हम कैसे भूल सकते हैं उस संघर्ष को, भूलना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों, पहले के समय की हम बात करें तो पहले कोई भेदभाव जो है वो ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। हर कोई जो है इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते थे, लेकिन अब की हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि ये हमारा, जरूरी नहीं है दोस्तों कि किसी से लड़ना ही है या किसी से मतलब कुछ भी, अपने राइट्स के लिए आवाज तक नहीं उठा पाते हैं हम। अपने समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, हम वहां आवाज नहीं उठा पाते, हम वहां भी शांत रहते हैं कि हम क्यों बोलें। तो ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि सोच की ओर प्रेरित करते हैं कि हमारी सोच कैसे है। खैर, आज के दिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि इरादे मजबूत हों और हृदय में राष्ट्र प्रेम हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। आज हम उनके साहस, त्याग और देश प्रेम को नमन करते हुए संकल्प लें कि हम भी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करें, देश की प्रगति में योगदान देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। उन्हीं के लिए एक और प्यारा सा देशभक्ति गीत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम अपनी डेली रूटीन के साथ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब फिर से अपनी उस खास बातचीत की ओर चलते हैं कि आज समाज में इतना भ्रष्टाचार या जो ये गलत अन्याय क्यों बढ़ता जा रहा है। आज हम किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाने नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या हम वास्तव में गलत आचरण को खत्म करना चाहते हैं या केवल दूसरों के गलत आचरण की आलोचना करना चाहते हैं। ये सवाल आपका खुद से होना चाहिए। दूसरों की गलती दिखाई देती है, अपनी नहीं। शुदा अक्सर हम कहते हैं आजकल हर जगह बेईमानी है, कोई अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, व्यवस्था खराब है, लोगों में नैतिकता नहीं रही। लेकिन क्या कभी हमने खुद से ये सवाल किया है कि क्या मैं हमेशा नियमों का पालन करती हूँ या करता हूँ? क्या मैं कभी किसी परिचित का नाम लेकर लाइन तोड़ने की कोशिश नहीं करती या नहीं करता? क्या मैं सब कभी भी अपना काम जल्दी करवाने के लिए किसी गलत तरीके को स्वीकार नहीं करती? क्या मैं कभी किसी सुविधा का अनुचित लाभ नहीं उठाती? यहीं से बात शुरू होती है। हमारे लिए दूसरों की गलती अक्सर बहुत बड़ी होती है, लेकिन अपनी गलती के लिए हमारे पास कई तर्क होते हैं। हम कहते हैं सब करते हैं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, थोड़ी सी बात है, अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई दूसरा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, गलत बात छोटी हो या फिर बड़ी, जब उसे सही ठहराने की आदत बन जाती है तो वही आदत धीरे धीरे हमारे चरित्र का हिस्सा बनने लगती है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

वाकई में दोस्तों ये प्यारा सा गीत सचमुच कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है ना असल जिंदगी से, कि जो गलत करता है वही गलत को पकड़ने के पीछे भागते हुए हैं। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये खूबसूरत सा गीत, कहानी एक चोर की फिल्म से लिया था, महेंद्र कपूर, यशुदास, हेमलता जी की आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका ने। तो आइए दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके, और अब आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में सीबीएसई उपकैडर के तहत 149 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश राजकीय चयन आयोग की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लोक प्रशासन शिक्षक के पद पर 72 और 77 फिजिक्स शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। निदेशालय के 17 अगस्त के कार्यालय आदेश के अनुसार इन शिक्षकों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाएगा। चयनित शिक्षकों को प्रति माह 30,000 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। ये मानदेय एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए देय होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्तियां सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित उप योजना के तहत की गई हैं। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए, आप सभी तक पहुंचाई गई रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

तो सो इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त सुरक्षिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से सफर के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से रुख करते हैं अपना बातचीत की ओर। जी दोस्तों, बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं, समाज वही है जो हम हैं, व्यवस्था भी उसी सोच का विस्तार होती है। अगर हम अपने जीवन में छोटी सी भी कोई गलती को स्वीकार करेंगे तो बड़ी गलती पर केवल भाषण देने से बदलाव नहीं आएगा। लालच अभाव नहीं, सोच की समस्या। जी दोस्तों, जब हम अनैतिक व्यवहार की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, लालच। लेकिन क्या केवल गरीब व्यक्ति ही लालची होता है? बिल्कुल नहीं। लालच का संबंध केवल पैसे से नहीं है दोस्तों। जिसके पास बहुत कम है वो भी संतोषी हो सकता है, और जिसके पास बहुत कुछ है उसके पास भी और अधिक पाने की भूख हो सकती है। किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, तो किसी को पैसा चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, और किसी को दूसरों से आगे निकलने की जल्दी। समस्या इच्छा में नहीं है दोस्तों, इच्छा हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन अनियंत्रित लालच हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। जरूरत और लालच में बहुत बड़ा अंतर है। जरूरत कहती है मुझे जीवन के लिए इतना चाहिए, लालच कहता है मुझे और चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और जब कुछ भी करने की मानसिकता पैदा होती है तब व्यक्ति अपनी नैतिक सीमाओं को पार करने लग जाता है। यही वो क्षण है जब हमारे पांव हमारी चादर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्तों, जितनी चादर उतने पैर। पुरानी कहावत, नई जरूरत। हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत साधारण शब्दों में जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। और भी बात करेंगे दोस्तों इस पे, और भी जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

तो सही, एक बार फिर से आप वापस जुड़ चुके हैं इस छोटे से अंतराल के बाद अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, बहुत ही खास बात आज के कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। तो ये जो कहावत है, बार बार हम बात कर रहे हैं इस कहावत की, और अक्सर हम कह सकते हैं टॉन्ट या फिर कई बार सीख भी देती है और एक समझदारी भी देती है कि हमें जो है अपनी सिचुएशन को देखकर ही लोगों के सामने अपने आप को दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम दिखावे के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लेकिन असल में हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े घरों में बढ़ जाते हैं। तो ये जो कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, ये सिर्फ केवल और केवल आर्थिक सलाह नहीं है, ये जीवन जीने का दर्शन है। इसका अर्थ है कि अपनी आय के अनुसार खर्च करना, अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लेना, अपनी सीमाओं को समझना, दूसरों की नकल में अपना जीवन ना चलाना। आज के समय में समस्या ये भी है कि हम अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जिंदगी को देखकर निर्णय लेने लगे हैं। किसी के पास नई गाड़ी है तो हमें भी चाहिए, किसी ने महंगा फोन खरीदा तो हमें भी चाहिए, किसी का घर बहुत बड़ा है तो हमारा भी बड़ा घर होना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की चमकती हुई जिंदगी देखकर हम अपनी वास्तविक जिंदगी से कहीं ना कहीं असंतुष्ट होने लगते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी है? क्या हर सुविधा जीवन की आवश्यकता है? और अगर हमारी आय सीमित है तो क्या हम अपनी इच्छाओं को सीमित करना जानते हैं? यहीं से आर्थिक अनुशासन की शुरुआत होती है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक जीवन शैली अपनाने की कोशिश करता है, तब कई बार गलत रास्ते आकर्षक लगने लगते हैं। इसलिए संतोष कमजोरी नहीं है, संतोष वो ताकत है जो हमें गलत रास्तों पर जाने से बचाता है। तो आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, जिसे लिया था मजदूर मूवी से, महेंद्र कपूर के आवाज में आप सभी तक पहुंचाया आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रचिका ने। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के लिए प्रदेश के 24 निजी डीएलएड संस्थानों को अस्थायी संबद्धता प्रदान की है। बोर्ड के अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षा विनियमों के कॉलेज क्लॉज 16.26 के तहत ये मंजूरी प्रदान की है। ये संबद्धता हमीरपुर स्थित गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज के संबंध में दायर CWP संख्या 1311/2017 कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन बनाम गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड अदर्स के 15 जून 2017 के मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। धर्मशाला की ओर से आयोजित काउंसलिंग के आधार पर ही दिया जाएगा। 24 संस्थानों के लिए कुल 1300 सीटें निर्धारित की गई हैं। जी दोस्तों, तो ये थी बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए और इसी जानकारी के साथ फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम का मनोरंजन के और, तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, तो बातचीत में और मनोरंजन में थोड़ा सा डाइवर्जन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं गंभीर और बातचीत से थोड़ा एनर्जेटिक और थोड़ा सा मजाकिया मूड में होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी एक ही मूड में बोरिंग सी लगने लग जाती। खैर दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय कार्यक्रम आप सब इंजॉय कर रहे हैं, तो आइए फिर से रुक करते हैं अपनी उस खास बातचीत की ओर। दोस्तों, आज हमारा समाज पहले की तुलना में अधिक शिक्षित है, तकनीक बढ़ी है, जानकारियां बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा होता है यहाँ। क्या शिक्षा के साथ हमारी नैतिक चेतना भी उतनी ही बड़ी है? शिक्षा हमें यह सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सही बात जानना और सही बात पर चलना दोनों ही अलग बातें। हम जानते हैं कि किसी से रिश्वत लेना या देना गलत है, हम जानते हैं कि किसी का हक मारना गलत है, हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, हम जानते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, फिर भी कई बार हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा केवल दिमाग को नहीं बल्कि हमारे व्यवहार को भी बदलनी चाहिए। अगर हमारी डिग्री बड़ी हो जाए लेकिन हमारा चरित्र छोटा रह जाए तो शिक्षा अधूरी है। अगर हम तकनीक का इस्तेमाल केवल गलत रास्ते खोजने के लिए करें तो प्रगति का उद्देश्य खो जाता है। आज जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो हमें केवल सफल नहीं बल्कि जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक भी बनाए। तो क्या आप जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक हैं? तो ये सवाल खुद से कीजिए और इसका जवाब खुद से ही पाइए और देखिए कि आखिर आप कहाँ हैं इस दुनिया में, अपनी जिंदगी में।

बिल्कुल दोस्तों, जागना बेहद ज़रूरी है आज के समय की अगर हम बात करें, क्योंकि आए दिन चोरी की हम बात करें तो ऐसी घटनाएं बहुत सी सामने आ रही हैं।

तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और हम बात कर रहे हैं, चूंकि समाज में ये भी गलत ही है, चोरी करना भी गलत है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम नजरिया या शब्द अलग यूज कर लेते हैं और गलत करते जाते हैं। जब हम गलत आचरण की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पैसा, रिश्वत या बड़े जैसे घोटाले बातें नजर आती हैं। लेकिन क्या गलत आचरण केवल आर्थिक होता है? बिल्कुल नहीं। कई बार नैतिक कदाचार बहुत छोटे रूपों में हमारे सामने मौजूद होता है, जैसे किसी के साथ उसके पद या पहचान देखकर अलग व्यवहार करना, किसी गरीब व्यक्ति को कम महत्व देना, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए नियम बदल देना, किसी परिचित का काम पहले कर देना और बाकी लोगों को इंतजार करवाना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी कर्मचारी या सहकर्मी का श्रेय खुद ले लेना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार ना करना, ये सभी बातें शायद हमेशा कानून की किताब में अपराध ना हो, लेकिन क्या ये नैतिक रूप से सही है? एक समाज की असली पहचान केवल उसके बड़े भवनों से नहीं होती, समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां कमजोर, गरीब और सामान्य व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, किस तरह से उनके साथ जिंदगी में सहारा दिया जाता है। दोस्तों, आज धार्मिक गतिविधियों और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बहुत दिखाई देती है, लेकिन हमें एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी आस्था हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है? अगर हम पूजा करते हैं लेकिन किसी का हक छीनते हैं, अगर हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं लेकिन घर या कार्यालय में किसी के साथ अन्याय करते हैं, अगर हम ईश्वर के से सत्य की प्रार्थना करते हैं लेकिन रोजमर्रा के जीवन में झूठ को स्वीकार करते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। आस्था का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं है, आस्था का सबसे सुंदर रूप है सत्य बोलना, दूसरों के साथ न्याय करना, लालच पर नियंत्रण रखना, कमजोर का सम्मान करना। धर्म हमें दूसरों से बड़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।

तो सही 91.2 ओमेगा हर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी ने ट्यून किया है बहुत ही प्यारा सा ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने इंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, और बहुत ही खास और बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें आप सभी के साथ साझा की है दोस्तों। जिंदगी के अनुभव जो है हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा ही देते हैं, और ये बातें कहीं ना कहीं अक्सर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, हर एक बात जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, तो अगर ये सोचकर हम आगे बढ़े तो शायद हम बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ सकते हैं। तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफ़र आप सभी ने इंजॉय किया बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल की।
3: जीवन उसकी पानी।
2: उसका
3: पापा पापा दूध उबल रही है।
4: उबल रहा है रहा।
5: बेटा खाया नहीं खाई।
3: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
2: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
4: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
3: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: आज स्कूल में क्या सीखा?
1: मछली जल का रानी।
0: जल का नहीं, जल की।
1: जीवन उसकी पानी।
0: उसका।
1: पापा पापा, दूध उबल रही है।
2: उबल रहा है। रहा।
1: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के हाथ में चांदी के रंग से चटनी चटा।
3: चटाई।
1: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
1: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
0: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
2: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
1: वो तो आ गई।
0: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया है, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल?

0: बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
1: कौन था?
0: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
1: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
0: स्मार्ट गर्ल।
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा,
2: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
3: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
4: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
5: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
5: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
10: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
9: मैं तो बुरी।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही खास जानकारी के साथ इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। जी दोस्तों, मेरे हौसलों की उड़ान कार्यक्रम हर हफ्ते आप सभी सुनते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास बातचीत में, खास कार्यक्रम में आप सभी के साथ।
1: थैंक यू रुचिका, और अच्छा लगता है जब हम अपने हौसलों को परवाज देते हैं यहाँ आकर नई जानकारियों के साथ। और मुझे लगता है कि आज के समय में जानकारी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचनी भी चाहिए। बिना जानकारी के हम कई बार कई तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि उन मुसीबतों से, उन समस्याओं से हम कैसे बाहर आएं। तो एक ही साझा प्रयास है हम सभी का, और मिलजुल कर हम अपने दोस्तों के साथ इस साझे प्रयास को सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ मनोरंजन का तड़का भी हम लगाएंगे इस कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो रूमा मैम हर बार जो है आपके लिए बहुत खास जानकारियां लेकर आते हैं आपकी अवेयरनेस से जुड़ी हुई। तो आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत खास ये बातचीत सतर्कता से जुड़ी आप सभी के लिए रहने वाली है। तो क्या खास आज के कार्यक्रम में रहने वाला है, ये सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपने इस बहुत ही खास कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान के साथ। और आप सभी को बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में रूमा जी के साथ जुड़ेंगी हमारे बहुत ही एक खास अनाउंसर ज्योति पठानिया जी। तो आज का ये कार्यक्रम आप हमारे इन खास मेहमानों के साथ सुनने वाले हैं और इस बातचीत को जानने वाले हैं, इस जानकारी को खुद तक पहुंचाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं।

0: दोस्तों बहुत ही इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और आज हमारे साथ ये उड़ान भरने को तैयार हैं ज्योति जी, जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इनकी आवाज, इनकी मधुर सी हंसी जो है वो वैसे ही कार्यक्रम में चार चांद लगा देती है। तो मनोरंजन का तड़का, मैंने इसीलिए कहा था हमारे कार्यक्रम में मनोरंजन का तड़का लगेगा, क्योंकि जहाँ ज्योति जी होती है वहाँ मनोरंजन भी होगा और जानकारियां भी बहुत पुख्ता होंगी।
1: बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मेरे ऊपर डाल दी है रुमा जी, और थैंक यू आपका, रुचिका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रुमा आपका भी धन्यवाद। और अब कर लेते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में बात कर लेंगे आज हम, बात करने वाले हैं मानव तस्करी के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: और रुमा ने जैसा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, देना तो मुझे चाहिए था उस तरह से वैसे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप तो रूमा को पहले से जानते ही हैं, तो ज्यादा नॉलेज जो है वो रूमा को है, हमने तो सिर्फ उनसे जानना है, उनसे कुरेदना है। तो आप पहले तो ये बताएं कि जो ये मानव तस्करी है इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, मतलब बच्चों का, लेडीज का, या फिर और हमारे युवा वर्ग भी है, तो कितने लोग आ जाते हैं इसके अंतर्गत?
0: थैंक यू ज्योति जी। पहले तो मैं बात करूंगी तस्करी के बारे में। तस्करी के बारे में इसको हम स्मगलिंग से भी जोड़ के देखते हैं। स्मगलिंग कई प्रकार की होती है, आजकल इसको एक नया नाम भी इसके साथ, स्मगलिंग के साथ जोड़ा गया है, वो है ट्रैफिकिंग। जब इंसानों का व्यापार होना शुरू हो जाता है, उनका किसी भी पर्पज से उनका अगर हम लेन देन करते हैं, चाहे वो जानवर है या इंसान है, किसी अपने स्वार्थ के लिए पैसा के लेन देन जब इंसानों की खरीद फरोख्त हमारी शुरू हो जाती है, तो वो मानव तस्करी में आ जाता है। और इस ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हमारे संविधान में भी मानव तस्करी को जो है वो असंवैधानिक घोषित किया गया है, और यहाँ पे अनुच्छेद 23 में इसे जो है एक बहुत ही घटिया किस्म का या तुच्छ किस्म का अपराध माना गया है। क्योंकि आप देखिए, आजकल के जिस समय में हम जी रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो घटित हो रही हैं। हम स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं, और अपने स्वार्थ के लिए हम हर एक तरह का अनैतिक कार्य भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उसमें हम किसी का, आपने पूछा मुझसे कि किस किस तरह के कार्यक्रम आते हैं, तो मानव किस तरह की तस्करी जो है वो पाई जाती है। तो मानव तस्करी में बहुत सारी चीजें हैं। आजकल आपने देखा होगा अखबारों में भी कई तरह की न्यूज आ रही है, टीवी चैनल्स भी अगर हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये सुनने को मिलता है कि फलां जगह पे किडनैपिंग हुई है, अचानक से बच्चे गुम हो रहे हैं, महिलाएं गुम हो रही हैं, और पूरे देश में ये जो विषय है वो चर्चा का विषय बना है, और बहुत ही गंभीर विषय भी है ज्योति जी, क्योंकि आजकल इंसान कैसे गायब हो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतनी गुमशुदगी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अनैतिक तरीके से युवतियों को, महिलाओं को या बच्चों को यौन व्यापार में धकेला जा रहा है, मानव अंगों की खरीद फरोख्त होती है, उसके लिए भी बच्चों का अपहरण या व्यक्तियों का अपहरण हो जाता है। कई बार हम घरेलू श्रम के लिए, कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी तस्करी हुई है, घरेलू श्रम में हम किसी व्यक्ति को जोड़ लेते हैं, उसके जो भी हमारे पास उस व्यक्ति को ला रहा है या हम किसी को काम पे लगा रहे हैं, तो उसके बदले में उसके पेरेंट्स को, बच्चों के स्पेशली बच्चों के केसेस में होता है, पैसे दे दिए जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि आपके बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाएगा, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा का जिम्मा जो है वो परिवार अपने ऊपर ले लेता है, जिस परिवार में वो बच्चा के काम कर रहा है, वो बच्चा कहाँ से आया, किस तरह से आया। और देखिए, जब हम बच्चे को अपने परिवार में ले आए हैं, घर का काम काज उससे करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये मानव तस्करी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक बच्चे को परिवार से ले आए हैं आप, और उसके पेरेंट्स को उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। वैश्यावृत्ति इसमें आती है, यौन गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने के लिए बच्चों का खरीद फरोख्त ली जाती है, और बॉर्डर एरिया जो है हमारे, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिव एरिया है हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह की जो कारोबार है वो बहुत फलता फूलता है, और ज्यादातर जो प्रवासी लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं या हम कहीं बाहर चले जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें पता नहीं है, वहाँ के कई बार हमें आजीविका जीने के लिए क्या होता है, हम गलत हाथों में पड़ जाते हैं, और हमारी मजबूरी का फायदा उठा के जो लोग हैं वो हमारा व्यापार करते हैं, तो मानव तस्करी में ये सब चीजें शामिल हैं।
1: बहुत कुछ है भाई, हमारी तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सुनकर के। और खास करके आपको भी पता ही होगा कि अब आजकल जो एप्स्टीन फाइल्स का जो मामला है, जब से वो खुला है तब से तो हम और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं, और इसके बाद जब हमें देश की राजधानी से खबरें आना शुरू हो गई कि वहां पर महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं कुछ तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन आधिकारिक तौर से पुष्टि ये आई थी कि नहीं ये अफवाहें हैं और ये फैलाई जा रही हैं। तो भी मन कुछ समझ में मतलब आ नहीं रहा था मन को समझ, क्योंकि मन थोड़ा है ना हमारा चंचल ही होता है, विचलित होता रहता है, और खास करके तब जब कि हमारे खुद के अपने बच्चे हों और छोटे बच्चे हों, और छोटे बच्चे जो है वो अपने घर में हों या फिर जो अपने हमारे युवा बच्चे हैं वो बाहर उन स्थानों पर गए हुए हों किसी भी वजह से, पढ़ने की वजह से या नौकरियों की वजह से, तो थोड़ा सा चिंता होनी स्वाभाविक होती ही है।
0: बिल्कुल, और ये चिंता जायज भी है ज्योति जी, क्योंकि आप देखिए कि देखते ही देखते अचानक से बच्चों का, महिलाओं का गुम हो जाना, ये अपने आप में हमारी ही नहीं पूरे राष्ट्र की चिंता है, और इस समय सभी इसके लिए जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से अचानक से। क्योंकि जब युवा बच्चे जब घर से जाते हैं कहीं काम करने और उनका आता पता नहीं चलता है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि शायद कहीं भटक गए हैं, कहीं घर परिवार को छोड़कर किसी के साथ रहना शुरू कर दिया है, जैसे आजकल के टाइम की बात देखें तो लिव इन में रह रहे हैं, और फिर बच्चे संपर्क तोड़ देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, संपर्क उन्होंने मजबूरी में तोड़ा होता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हमारे बच्चे को मजबूरी में लिव इन में रहने के लिए मजबूर किया हो किसी ने। तो बहुत सारी चीजें जो है वो मानव तस्करी को दायरे में रखकर हम देखते हैं, और जरूरी भी है, क्योंकि आजकल आपने देखा है बाहर के जो है लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे ढाबों में काम कर रहे हैं, और जब बच्चे से बात की जाती है, जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की जो टीम है, जब हम ऐसे बच्चों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे माता पिता या नेपाल में है या बिहार में है या यूपी में है, और वो बच्चा यहाँ पे अकेला रह रहा है, और उसके बारे में पूछा जाता है तो उसको क्या

0: देता है तो सिर्फ उसको खाने के लिए रोटी दी जाती है, सोने के लिए एक बिस्तर दे दिया गया है, वो उसकी क्या क्वालिटी है उसका कोई ध्यान नहीं है। और बच्चे को ये भी नहीं पता है कि उसको यहाँ आए कितना टाइम हो गया है, उसके माता पिता उसको लेने वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे।
1: और बच्चों को शायद ये सिखा भी दिया जाता है कि अगर कोई तुमसे पूछे आकर के कि तुम कितने साल के हो, तो उन्हें उस तरह से ट्रेन किया जाता है, उन्हें मतलब थोड़ा सा डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने ऐसा बोला और ऐसा नहीं बोला तो हम तुम्हें यहाँ से हटा देंगे या तुम्हारे माता पिता को बोलेंगे कि ले जाओ या कुछ भी, मतलब इस
0: बिल्कुल बच्चों के मन में एक डर पैदा कर दिया जाता है ताकि वो झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनसे अगर हम बच्चों के श्रम की बात करें तो चाइल्ड लेबर जो है वो भी बैन है ऑल ओवर इंडिया में। हम कहीं भी किसी 14 साल से नीचे के बच्चे को काम पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों को डरा धमका के इस तरह के काम लिए जाते हैं। और बच्चा डरा होता है क्योंकि उसके माता पिता तो पहले ही उसके पास नहीं है, आश्रय उसके पास है नहीं है, नियोक्ता जिसने उसको काम पे लगा रखा है वही उसका सर्वे सर्वा है, तो उसको उसकी बात माननी पड़ती है। और डर के साय में जीता हो ये बचपन कहाँ जा रहा है वो हम सभी समझ सकते हैं।
1: तो रुमा जी, ये बहुत बातें जो है संजीदा होती चली जा रही हैं, हमें लगता है एक ब्रेक की जरूरत है, तो एक गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत। हमारा कार्यक्रम जो है वो है मेरे हौसलों की उड़ान, और इस समय आपके सामने है रूमा गुलेरिया जी, जो कि DCPU यूनिट में है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में
1: जी।
0: और आए दिन ऐसी समस्याओं से दो चार ये होती ही रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं मानव तस्करी के बारे में। तो मानव तस्करी कैसे पहचाने रुमा कि मानव तस्करी यहाँ पर हुई है या होने वाली है, तो क्या क्या लक्षण होते हैं इसके?
1: देखिए, अगर साधारण तौर पर हम देखें तो हम नहीं जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई विक्टिम है मानव तस्करी का। पहले तो हमें विक्टिम की पहचान करनी है, और उसके लिए मैंने पहले ही आपको एक बात कही कि छोटे बच्चों को हम रख लेते हैं और काम के लिए, और जब हम पूछते हैं तो बच्चे को पता नहीं होता है। तो सबसे पहले तो वही एक चरण हमारा पहला शुरू हो जाता है किसी भी बच्चे को जानने के लिए या किसी भी महिला को कि वो मानव तस्करी का शिकार है या नहीं है। और इस तरह के जो लोग होते हैं थोड़े अपने आप में डरे से रहते हैं, जब हम किसी से सामान्य तरह से जब बात करते हैं तो वो बात नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों की एक और जो क्वालिटी है वो देखा जाए तो अनपढ़ता हमारे देश में अभी भी व्यापक तरीके से बहुत सारी एरिया जो है जहाँ पे अभी शिक्षा का अलग नहीं जागा है, और गरीबी सबसे बड़ा कारण है, और जिसकी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जब भी इनसे आप बात करेंगे तो वो कांपते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और हमेशा ही वो इस ताक में रहते हैं कि कहीं हमारा मालिक हम किसी से बात कर रहे हैं तो सुन ना ले। और अभी हाल ही में 2 या 3 साल पहले हमारे पास एक मैटर आया था, बिहार का कोई दंपति थे जिन्होंने अपने बच्चे को हमारे यही स्थानीय एरिया में किसी के घर में पशुशाला में काम करने के लिए छोड़ दिया था, और बच्चे की आयु मात्र 13 साल थी। और जो उस बच्चे की कंडीशन क्या थी कि वो सारे काम करता था, गाय का दूध निकालना, गोबर उठाना, हर तरह के वो काम, पूरा सुबह 4 बजे उठता था और उसकी दिनचर्या रात को 9-10 बजे खत्म होती थी। गौशाला का काम करने के साथ साथ वो पूरे घर के काम भी करता था, लेकिन उसको रोक रखा था कि वो किसी से बात नहीं करेगा, घर में कोई मेहमान आता था वो उनके सामने नहीं आता था, और बाजार में उसको अगर वो जाता भी था तो उसके साथ घर का कोई ना कोई सदस्य होता था ताकि वो इस तरह की अपने बारे में किसी से बात ना कर सके। इस बारे में उनके पड़ोसियों ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया और उस बच्चे की जानकारी दी, और जब टीम वहां पे पहुंची है तो उन्होंने देखा और उस बच्चे से बात की, तो वो 2 दिन तक तो बच्चा वही बोलता रहा कि मैं यही रहता हूँ, यही मेरे सब कुछ है। उन्होंने बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी करवाया था लेकिन वो स्कूल में नहीं जाता था। और जब उनसे पूछा हमने कि आप इस तरह से क्यों है, बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये पढ़ना नहीं चाहता है। फिर बच्चे से पूछा गया तो उसको उसके पास ना तो उसका आधार कार्ड था, ना ही उसकी कोई और जानकारी बच्चे के पास थी, उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, क्योंकि आई थिंक वो बच्चा 6 या 7 साल की उम्र से उनके पास रह रहा था और इतने सालों से वो अपने माता पिता से नहीं मिला था, और बच्चे के मन में एक डर था कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। और फिर उसको रेस्क्यू किया, उसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो बिहार पूर्णिया के रहने वाले माता पिता थे। उनको बुलाया गया तो जब उनकी कंडीशन देखी गई तो वो 6 या 7 बच्चे उनके ऑलरेडी थे और ये बच्चा सबसे बड़ा था, तो उन्होंने बोला कि हमें जो है इन्होंने पैसे दिए थे बदले में कि हम आपको 50,000 रुपया दे देते हैं। यहाँ पे उनका काम नहीं चल रहा था तो उन्होंने वापस जाना था।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने इस बच्चे को हमारे पास छोड़ जाइए, तो उन्होंने 50,000 रुपया लिया और बच्चा अपने पास रख लिया, माता पिता को दे दिए 50,000। तो वो मानव तस्करी का ये जो मुद्दा जब हमारे सामने आया तो उस बच्चे को सामान्य करने में बड़ा टाइम लगा। उस बच्चे के पास वो बच्चा तब तक नहीं बोल पाया हमारे साथ जब तक हमने उसको विश्वास नहीं दिलाया कि आपके रहने खाने पीने का और सारी सुरक्षा का प्रबंध जो है वो विभाग करेगा। उसके बाद उस बच्चे ने सारी बातें बताई, उसके साथ क्या होता था, माता पिता कैसे चले गए। तो देखो, इस मैटर में माता पिता भी अपराधी थे।
0: बिल्कुल हाँ।
1: और जिन्होंने उन माता पिता की मजबूरी का फायदा उठाया वो तो अपराधी थे।
0: यहाँ पे बस यही जो बात अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया बताया जो रियल स्टोरी थी, तो ये समझ में आता है कि मानव तस्करी जो होती है ये कई बार तो नोइंगली भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: कि माता पिता भी जानते हैं, घर वाले सब जानते हैं, और पैसे के लेन देन से ये सब कुछ होता है, लेकिन कई बार वैसा होता है ना, जब
1: बिल्कुल कई बार व्यक्ति को खुद को नहीं, बच्चों के ही मैटर में बात नहीं करूंगी मैं, बड़ों की भी अगर बात करूं तो उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि हमारा जो है वो अनैतिक व्यापार हो रहा है। जो विक्टिम है उसको खुद को नहीं पता होता है, लेकिन जब उसको इस बारे में समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो जानकारी है, यही हमारा मकसद भी है इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि हम अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि वो जाने कि अगर उनके आसपास इस तरह की कोई घटना तो नहीं हो रही है। और हाल ही में हमारे जिला में बच्चों की तस्करी के जो मैटर सामने आए, तो उसमें जो ऐसे लोगों को टारगेट किया गया, ऐसे माता पिता को जिनके पास बच्चे नहीं हैं और वो अच्छा। काफी समय से संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हैं हमें बच्चा चाहिए, और ये जो मानव तस्करी करने वाले गिरोह होते हैं ये नजर रखते हैं, उनके अलग अलग विभागों में अलग अलग जगहों पे उनकी बैठ होती है और उनकी पहुंच रहती है, और वो ऐसे माता पिता को अपना निशाना बनाते हैं जिनको बच्चों की जरूरत है।
0: अच्छा।
1: और अस्पताल में उनका अपना उनकी पहुंच बनी रहती है, कौन सी महिला है, जैसे ये टारगेट करते हैं गरीब लोगों को जिनके पास पहले से ही दो तीन बच्चे हैं और अपने आने वाले बच्चे को वो पालना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, उन माता पिता से जिनको बच्चा चाहिए उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे उनको बच्चा हैंड ओवर कर देते हैं।
0: रूमा जी, यहाँ पर ना मैं आपसे एक गीत के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद मैं आपसे एक बात बताऊंगी जो कि बहुत ही शॉकिंग है। शॉकिंग इन द सेंस कि हम ओपनली बहुत कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले हो जाए एक
1: बिल्कुल
0: म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओ, तो इस गीत के बाद हम फिर से आ जाते हैं अपनी बातचीत पर। रूमा, बड़ी ही, मुझे तो ऐसा लगता है, बड़ी संजीदा बात, बड़ी ऐसी बात जिसको सुन करके लोग बिल्कुल शैटर्ड हो जाएं, जो कि वाकई में कुछ सोचते हैं, समझते हैं। तो बात हम कर रहे हैं आज मानव तस्करी के बारे में, और रूमा जी ने बहुत कुछ बता ही दिया है, लेकिन मैंने आपसे गीत से पहले कहा था कि मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ।
1: जी,
0: मैंने एक दिन, जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो YouTube भी देखते हैं और भी बहुत सारे मीडियाज हैं, देखते हैं हम Instagram, Facebook, तो YouTube पे मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं और वो ओपनली अपने छोटे बच्चे को, जो अभी अभी शायद पैदा ही हुआ है, कुछ ही महीनों का है, वहां पर वो कह रहा है कि जिसको चाहिए वो ले लो इतने पैसे दे करके। ये कैसे है और इसके ऊपर क्या कोई लगाम नहीं लग सकती क्या? इसके बारे में मतलब प्रशासन को बिल्कुल नॉलेज नहीं, वो उनकी नजर में नहीं आया, अगर कोई रिपोर्ट कर दे तो मतलब ये किस तरह से होता है? ओपनली जब सब काम हो रहा है तो फिर हम कहां, हम ये न्याय संहिता और इन सब के चक्करों में पड़े हुए हैं, तो ये कैसे?
1: जी, आपका जो सोच और जो सवाल है वो बहुत ही बढ़िया भी है और गंभीर मुद्दा भी है। ये देखिए, ओपनली हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा ले जाइए, और इस तरह से वो हम इसको पार नहीं सकते हैं, तो पहले तो मैं जो भी यूट्यूबर या जो भी सोशल मीडिया वाले व्यक्ति हैं, आजकल के समय में हम सभी यूज कर रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह यही है कि अगर आप अपने बच्चे को पार नहीं सकते हैं, आप सक्षम नहीं है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकें, तो इसके लिए जो हमारी भारत वर्ष की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे बच्चों की अडॉप्शन की एक एजेंसी है जिसको हम चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है अपने बच्चे को जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी को बोले तो देखिए, ये अपने आप में अपराध है। हमने पहले ही कहा है कि बच्चों की खरीद फरोख्त है, या बच्चों को इस तरह से निराश्रित कर देना, ये अपने आप में क्राइम है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बच्चे को नहीं पाल सकते हैं, तो हमारी स्टेट अडॉप्शन एजेंसी भी यहाँ पे काम कर रही है, आप यहाँ पे भी बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा इस तरह के जो अनवांटेड बच्चे होते हैं, जैसे ही कोई नवजात बच्चा, हमने कई बार सुना है या पढ़ा है या देखा भी है कि बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया या कहीं मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ दिया, तो ये भी एक क्राइम है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम हमारे जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला में पालना रखा गया है। जो पेरेंट्स बच्चे को नहीं रख सकते हैं, या किसी भी वजह से, समाज की बदनामी की वजह से या अपनी गरीबी की वजह से वो बच्चा नहीं पाल सकते हैं, तो वहाँ पे छोड़ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा अब क्या है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट अडॉप्शन एजेंसी जो है वो खुल गई है, तो वहाँ पर भी हम अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास हम अपने बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं कि हम इस बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है, तो आप सरकार को दे दीजिए। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं ऐसे माता पिता की जो बच्चा चाहते हैं, कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने हर तरह की मेडिकल सुविधाएं भी, जो भी उनको मिल सकती थी, उनके माध्यम से भी उन्होंने बच्चे के लिए कोशिश की, लेकिन वो बच्चा नहीं पा सके, और हमारे पास उनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग रहती हैं। तो झाड़ियों में फेंकने की बजाय या यूं ही कहीं भी बच्चे को मार देना जो है वो गलत है। आप हमें दे दीजिए, हम उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे और उस बच्चे को एक अच्छे माता पिता मिल जाएंगे।
0: मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि शायद जो लेमैन है, आम आदमी है, और वो पहले से ही अपने स्थितियां ही नहीं संभाल पा रहा है, गरीबी में है जैसा आपने कहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सरकार जितना भी सारी योजनाएं चला रही है उस तक पहुंचती होंगी। तो ये जो उस तक पहुंचाने का भी कोई रास्ता सरकार निकाले अगर, कि अच्छी तरह से पब्लिसिटी की जाए।
1: देखिए, इसके लिए समय समय पर जो है वो विभाग पूरे प्रदेश में जो है हमारे कैंप लगते हैं, ग्राम पंचायतों में कैंप लगते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक जो है वो ये जानकारी पहुंचाई जाती है, और आशा वर्कर जो है हमारी हर गाँव में काम कर रही है, तो उनकी नजर में रहता है कि कौन सी महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, या कौन सी परिवार जो है वो बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अबॉर्शन अपने आप में पहले से ही एक क्राइम है, और आशा वर्कर की नजर में ये चीज रहती है, और अगर अबॉर्शन का समय है तो समय पर करवा लिया जाए। अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए कई बार महिलाएं जो है वो टाइम अधिक होने के बाद भी अबॉर्शन करवाती हैं, ऐसे में उनको सलाह यही दी जाती है आंगनबाड़ी वर्कर और जो आशा वर्कर के माध्यम से भी उनको बोला जाता है, अगर वो बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं।
0: रुमा, इसमें बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि देखिए ये सारी जो जानकारियां हैं हम मानते हैं ये ग्राम पंचायत स्तर तक जाती हैं, आपने कहा, लेकिन होता क्या है ना कि ये जो बाहरी प्रदेश से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं ना, ज्यादातर इनके साथ ये चीजें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब जैसे आपने अब वो एग्जाम्पल जो दिया था कि उसमें वो लोग वापस जा रहे थे और जाते जाते वो अपना बच्चा जो है वो छोड़ गए, तो शायद वैसा कुछ होता होगा। और वो लोग तो अपना दिन में काम पे निकल जाते हैं, शाम को अपने घर वापस आते हैं, वो कहाँ ये सब मीटिंग्स अटेंड करते हैं ना। तो क्या प्रदेश सरकार हमारी जो है वो उन लोगों तक भी पहुंच रखती है या रखनी चाहिए?
1: बिल्कुल रखती है। हर एक पंचायत में जो हमारे पंचायत प्रधान हैं और वार्ड मेंबर हैं और आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं, वो मैं ये कहूंगी कि हमारी हर एक पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। और जो भी पंचायत में या वार्ड में व्यक्ति रहता है, चाहे वो किराएदार है, इवन झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं, उनका भी रिकॉर्ड रहता है, वहाँ पे भी समय समय पर मेडिकेशन या जो भी जरूरत रहती है लैक्टेटिंग मदर के लिए, या जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन को जो इंजेक्शन समय समय पर दिए जाते हैं, आयरन कैल्शियम की गोलियां जो वितरित की जाती हैं, वो आशा वर्कर के माध्यम से की जाती हैं। लेकिन वही है कि कई बार क्या होता है, आजकल का जो समय है हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, बहुत सारे गलतियां भी हम कर लेते हैं। और हमारे जो माता पिता हैं, कई बार अगर हमारे बच्चे से कोई गलती हो गई है, कोई अनमैरिड महिला है या इस तरह की कोई बच्चा सामने आ जाता है, तो ज्यादातर उन्हीं बच्चों के साथ ही होता है कि उनको झाड़ियों में फेंक दिया जाए या मार दिया जाए या फिर गुप्त तरीके से उसको किसी को बेच दिया जाए। मैं दे देना तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इस तरह की चीजें जाती हैं, तो हम मानव तस्करी की बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है थोड़े से अगर आर्थिक लाभ आपको मिल रहा है तो हम देखते हैं कि कोई बात नहीं, उसी बात को वहीं पे अंडरग्राउंड कर दिया जाता है और पैसे के बदले में वो बच्चा खरीद लिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही संगीन अपराध है। और आप अभी भारतीय न्याय संहिता में जो बदलाव आया है, तो उसमें धारा 143 और 144 में जो इसमें कड़े प्रावधान किए गए।
0: धाराओं के बारे में हम जरूर बात करेंगे रुमा जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम मानव तस्करी की बात करते करते शायद बीच में विषय से थोड़ा सा
1: बिल्कुल
0: भटक भी जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, लेकिन ये सारे आपस में जुड़े हुए विषय हैं, तो इसलिए ये सब बातें करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में एक ब्रेक लेना भी तो जरूरी हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: भारत से गीत के बाद एक बार फिर हाजिर हो गए हैं हम करने सब आप सभी से बातचीत और फिलहाल तो रूमा जी से बात हो रही है 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। कार्यक्रम है मेरे हौसलों की उड़ान, तो थोड़ा तो हम उड़ लिए हैं रूमा जी के साथ और अब हम बात करेंगे मानव तस्करी के बारे में। तो ये जो धाराएं होती हैं ये क्या क्या हैं, किस किस उसमें क्या क्या सजा हो सकती है लोगों को?
1: मानव तस्करी अधिनियम को बहुत ही अब स्ट्रिक्ट किया गया है, 1986 में यह अधिनियम आया था, उसके बाद इसमें 2 या 3 बार अमेंडमेंट हो चुकी हैं, लेकिन सन 2023 में इसमें फिर से बदलाव किए गए। अब जो है इसमें सजा जो है वो बढ़ा दी गई है, धारा 143 और 144 जो है वो मानव तस्करी के खिलाफ कड़े उपबंधों का उसमें शामिल किया गया है। उसमें इसमें जैसे किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी महिला को या किसी बच्चे को श्रम के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए या मजबूर किया जाता है किसी भी काम के लिए और उसके बदले में पैसे का लेन देन अगर वहाँ पे शामिल हो जाता है तो वहाँ पे सजा का प्रावधान है। ये पहले जो थी सजा 5 साल तक थी, अब इसको बढ़ा के 7 साल से लेके 14 साल या फिर आजीवन कारावास और साथ ही साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। और इसके लिए ये जरूरी भी था क्योंकि आजकल मैंने पहले भी कहा कि कई बार जो व्यक्ति है उसको खुद को ही नहीं पता होता है कि उसकी तस्करी हो रही है। आजकल बेरोजगारी जो है बहुत व्यापक स्तर पर है, लोगों को झांसा दिया जाता है, बहुत सारे लोग इस तरह से हमारे सामने आ जाते हैं कि आप हमें पैसे

0: हमारी जरूरत है, हर एक परिवार को अपने बच्चे को या व्यक्ति को अपने परिवार को चलाने के लिए रुपए पैसे की तो जरूरत है। और जब हमें प्रलोभन दिया जाता है कि आपको नौकरी दी जाएगी, हमें बोला जाता है कि आपसे ये काम लिया जाएगा और उसके बदले में हमें कुछ और काम करवाया जाता है, तो वो भी मानव तस्करी में ही अब शामिल कर लिया गया है जी। इस अधिनियम में एक और भी जो बात है वो विशेषता जोड़ी गई, वो ये थी कि अगर किसी बच्चे की तस्करी की जाती है या किसी महिला या किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए धकेला जाता है तो भी ये सजा जो है अब बढ़कर 14 साल या उम्र कैद में बदल दी गई है। और साथ ही साथ भिक्षावृत्ति के लिए अभी हमारा तो यहाँ जो हिमाचल की हम बात करें तो ये इस तरह के अपराध कम हैं, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है, बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, उनके अंग तोड़कर उनको भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है या फिर अंग निकाल के बेच दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनको इसमें शामिल करना बहुत जरूरी था और जो हमारा जो कानून है उसको सख्त बनाया गया ताकि मानव तस्करी के ऊपर रोक लगाई जा सके।
1: रोमा जी, जैसे आपने हिमाचल की बात की, मैं भी अभी इसी बात पर आना चाह रही थी कि आप तो कांगड़ा में ही काम करती हैं
0: जी,
1: तो क्या वाकई में हमारे यहाँ पर ऐसे जो ये मानव तस्करियां हैं इसके केसेस कम है?
0: अगर पूरे देश की हम बात करें और उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान के साथ हम कंपेयर करें तो
1: मतलब
0: हिमाचल में केसेस कम है। अभी हाल ही में हमारे सामने इस तरह का मुद्दा आया था जहां एक बच्चे को बच्चे की खरीद फरोख्त हुई है और इस तरह के कई सारे केसेस जो हैं वो हमारे हिमाचल में भी, जिला कांगड़ा में भी दर्ज हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस तरह के अपराध से बचे हुए हैं। भिक्षावृत्ति हमारे हिमाचल में भी होती है, बहुत सारे मंदिर हैं, शक्तिपीठ है हमारे पास, और जब भी नवरात्रे या कोई भी पर्व आते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियों को चुनरी उड़ा के बिठा दिया जाता है और वहां पे उनके माता पिता खुद ये सब कर रहे हैं। तो भिक्षावृत्ति के लिए बच्चे को मजबूर करना ये सब उसी में श्रेणी में भी आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हम इससे बचे हुए हैं, हमारे पास भी अपराध हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों की वजह से कुछ हद तक सीमित है।
1: और ये भी जरूर होगा कि हर एक अपराध का जो तरीका होगा ना वो अलग अलग होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो गिरोह होते हैं इस तरह के उनकी अपनी तरीके होते हैं, उन्होंने अपने बचने के लिए भी काफी सारे मानदंड रखे होते हैं। बचने के तरीके तो सबसे पहले सोचते हैं, क्राइम करने वाले की मंशा ही ऐसी होती है कि अगर वो कहीं किसी अपराध में संलिप्त है और फंस जाता है तो उसने खुद को कैसे बचाना है। तो ये तो सारी चीजें हमारे साथ चल ही रही है। देखिए ज्योति जी, मुद्दा ही हमारा ऐसा है क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं, हम सामान्य बातें करेंगे। और आजकल के समय में जिस तरह से साइबर अलर्टनेस हमारे लोगों में जागी है, हम बच्चे बूढ़े हर कोई फोन के साथ जुड़ा है, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहां पर हमें अच्छी चीजों के साथ साथ जो गलत चीजें हैं वो भी सिखाई जाती हैं। इवन मैंने देखा है कई बार हम नेट पे सर्च करते हैं तो हमें चोरी करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। तो देखिए बच्चे फिर इस तरह की चीजें सीखेंगे और अपराधों का तो जन्म होगा ही।
1: जी बिल्कुल। तो रुमा, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए अब तो हम लोग वैसे कैसे जमाने में पहुंच गए, अभी थोड़े दिन पहले ही एआई की बात की हमने इसी स्टूडियो से, और अगर हम इस समय में भी अपने आप को नहीं संभाल पाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं और लोग हमारा मिसयूज ऐसे ही करते ही रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो जो बड़े हैं, व्यस्क हैं, युवा हैं, वो तो समझ सकते हैं और वो खुद ही फंसना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, परंतु अगर निकलना चाहते हैं तो हजार तरीके होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल उनके पास होता ही है, तो आप अपना देखिए कि आप किस तरह से निकल सकते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों के पास भी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, बेशक उनके पास मोबाइल नहीं होगा क्योंकि जब ये तस्करी इस तरह से की जाती है, बच्चों को इस तरह से रखा जाता है जैसे हमने अभी बात की, तो उनके पास मोबाइल होना तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना खोज सकते हैं तरीका कि किस तरह से, उतने व्यस्त तो इतने तो वो समझदार होते ही हैं कि कहीं से कोई मोबाइल उनको मिला और उन्होंने उस पर कोई नंबर डायल किया ताकि वो सही व्यक्ति तक पहुंचे उनकी बात और वो वहां से उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, कोई नंबर आप बता सकेंगी?
0: बिल्कुल ज्योति जी, सबसे पहले अगर इस तरह के क्राइम हो रहे हैं या इस तरह का कोई विक्टिम पाया जाता है तो उसका रेस्क्यू बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी जानकारी भी प्रशासन तक होना बहुत जरूरी है।
1: कोई और दूसरे व्यक्ति भी तो दे सकता है ना?
0: बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 100 नंबर पे हम कॉल कर सकते हैं और ये बड़े आसानी से याद हो जाता है और हर कोई व्यक्ति 100 नंबर पे कॉल

0: करके जो है इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा सकता है अगर कोई व्यक्ति कहीं पे भी हमें विक्टिम नजर आता है।
1: एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी होता है।
0: बिल्कुल, और बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर है 1098, और इसके ऊपर आप कॉल करके अगर कोई बच्चा खुद भी कर सकता है बात, और कोई व्यक्ति अगर देख रहा है किसी बच्चे को गलत काम में लगाया गया है, फोर्सफुली उससे लेबर का काम किया जा रहा है या फिर किसी वजह से उसकी खरीद फरोख्त हुई है, तो 1098 पे भी आप बातचीत कर सकते हैं, उस बच्चे की जानकारी दे सकते हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी रहती है ज्योति जी, जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसकी जो
1: आइडेंटिटी
0: जो है बिल्कुल वो गोपनीय रखी जाती है ताकि उसके ऊपर किसी तरह की कोई आंच ना आए, क्योंकि आप जानती हैं आजकल कोई भी किसी के लिए
1: मैटर में फंसना नहीं चाहता
0: है, क्योंकि हर कोई सोचता है हम अपनी जिंदगी शांति से जी रहे हैं तो फिर क्यों हम किसी के पचड़े में पड़े।
1: सब लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारी तो देखो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर तरह की जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हमारे दोस्तों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो भी ये जानकारी अपने दोस्तों तक रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, और उनको लगता है कि कोई व्यक्ति मानव तस्करी का शिकार हो रहा है तो उसकी हेल्प वो कैसे कर सकते हैं। वो सारे ही तरीके हमने लगभग अपने दोस्तों को बता ही दिए हैं, तो उस माध्यम से वो कर सकते हैं और वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए जिला बाल संरक्षण कार्यालय है, वहाँ पे भी संपर्क किया जा सकता है, और आप डायरेक्ट भी हमसे बात कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9418431223। आप ईमेल के माध्यम से भी जानकारी जिला बाल संरक्षण कार्यालय तक पहुँचा सकते हैं, और यहाँ का ईमेल आईडी है bcpokangra@gmail.com।
1: धन्यवाद उमा जी इतनी अच्छी जानकारी के लिए। आज का ये सेशन अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारी इससे मिली होगी, और कहीं पर भी आप ऐसा कोई भी कृत्य होते हुए देख रहे होंगे, आपका मानसिक जो है या आपका मन आपको ये कहता होगा कि सामने में कुछ चल रहा है जिसमें आपको डाउट हो रहा है, तो जरूर जरूर उस व्यक्ति की मदद करने के बारे में सोचिए, उससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश कीजिए और सही जगह पर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए थे, और कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान अब यहीं पर समाप्त होता है। इजाजत चाहते हैं,

0: बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCI जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, OMR शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल्स में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुडा और म्यांमा की थेत हतार्थुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहल जीत लिया है। लक्ष्य सेन आज शाम पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के हाथ में चांदी के रंग से चटनी डाला।
4: छताई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल है? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: क्या देना? नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
9: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

श्रोताओ आओ सुनते ने कार्यक्रम का सब तो पहला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
4: चटाई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे,
9: दीवार पे लगाने वाला लाएंगे टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। देखो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो
12: शुक्ला जी। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की।

0: एक कदम स्वच्छता की ओर।
1: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
2: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
1: मैं तो बुरी थी।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ए तुहा सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ताशो तो पहले तो तुहा सारें दा ही इस माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी कन्ने नमस्ते भी तुहां तक पुजी आना है, कने तुहां जिहड़ा मेरा नमस्ते है या तुहां दा जिहड़ा स्वागत है से तुहां जरूर स्वीकार जिहड़ा है से करी ले आना है, क्योंकि तुहां सारे जो इंतजार जिहड़ा है से रहिंदा है कि कालू दिया 2 बजदे न, कने कालू दिया तुहां सारे इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़दे न। अगर मौसम दी गल करिए तां बरखा जिहड़ा से लगी हुआ है, कने तुहां भी जरूर अपने अपने शहर या गांव दी जिहड़ा मौसम है से यहाँ तक पहुँचाई सकते कि तुहां दी साइड बरखा जिहड़ा से लगी हुआ है कि नहीं लगी हुआ है, क्योंकि हर मौसम दा जिहड़ा बदलाव है से चले रहिंदा तो जरूर मौसम दा जिहड़ा बदलाव है से यहाँ जो जरूर दिखने जो मिला था है, कने इसी कन्ने मौसम दे अनुसार अहां अपना जिहड़ा ख्याल है सभी रखना है। इसी ख्याल कन्ने अहां अज जिहड़ा कार्यक्रम च गलबात करनी है सभी तुहां तक पहुँचाई दे न, क्या जिहड़ा गलबात अहां दी रहनी है अज जिहड़ा खास दिन अहां बना दे न से बना दे न, विश्व जिहड़ा कभी भी जिहड़ा हार जिहड़ा से नहीं मनाना, यानी कि अहां अगर जिंदगी च कोई भी काम कर दे न या सफलता दी ओर चल दे न तो जरूर अहां जो सफलता दी ओर जिहड़ा बढ़ना है से यही सोच विचार अहां जो रखना चाहिए कि अहां इस काम जो करी सकते न, तो इसी काम जो अहां जरूर तुहां तक या गलबात जो जरूर तुहां तक पहुँचाना है। पर पहले इस गीत जो तुहां तक पहुँचाते न तुहां सारे भी इस गीत या शुरुआत जो इंजॉय करा, फिर ही बाकी दियां जिहड़ा गल्लां न से तुहां तक अहां पहुँचाते न।

0: ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तुहां सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत। तो जरूर शुरुआत अहां इस गीत कन्ने कीती है कन्ने तुहां सारे जो भी ये गीत जेड़ा इसे पसंद आया होना है, क्योंकि पसंद तो होना बनता है ना। पहाड़ी जेड़ा गीत हैं से कुथी ना कुथी अहां जो अपनी संस्कृति कन्ने जोड़ी कर रखते हैं ना, कन्ने अपनी जेड़ा अहां दे जितने भी रीति रिवाज हैं या अपना जेड़ा कल्चर है तुसी कन्ने जोड़ी करी जेड़ा इसे जरूर रखते हैं। कन्ने लिए जेड़ा गाना तुहां तक मैं पहुँचाया, न्यू ही जेड़ा गाना है अली रिलीज़ होया कल जेड़ा इसे अली 9 घंटे जेड़ा न 19 घंटे जेड़ा न से जो रिलीज़ होया न, कन्ने जरूर तुहां तक अहां ये गीत जेड़ा इसे पहुँचाया कन्ने तुहां जो पसंद भी आया होना है। कन्ने जेड़ा पहले श्रोता हाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तीना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी
0: जी। तुहा कुथु ते बोला दे कन्ने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मैं प्रिया बोला ही साई ते।
0: जी प्रिया जी, तुहा क्या कर दे जी?
1: क्या करना, कुछ नहीं, धुप्पा लगियां
0: जी। अच्छा उस साइड धुप्पा लगियां?
1: हां जी
0: जी, साइड ता बरखा लगी हो जी?
1: जी जी, ऐसे धुप्पा लगियां दीदी
0: जी। ताता मौसम च कुथी ना कुथी सही ना, कि मैं यही गल करा दी थी कि थोड़ा दिया मौसम च भी बदलाव जेड़ा है से रहंदा है ना जी।
1: हां जी
0: जी जी। ता प्रिया जी, कदिया लगदा तो जो एक कार्यक्रम माटी दी महक
1: ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰਿੰਦੀ ਜੀ?
0: ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ?
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਜਾਂ ਆਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਚੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੜਾਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਜੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚ
1: ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ?
0: हेलो।
1: हाँ जी
0: जी जी। तो हाँ क्या मतलब थी ना, जो क्या बोलना चाहेंगे जिना बच्चे ना, बच्चे भी अगर गाल करिए तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया जितने ज़्यादा बिजी है, युवा पीढ़ी है से नशे की तरफ इतनी ज़्यादा, तो हाँ हर दिन न्यूज़ जेड़े से सुनते रहते ना जी। हेलो।
1: हाँ जी बोला जी।
0: जी जी। तो क्या प्रेरणा जेड़े से मैं जेड़ा गलबात तुहां तक पहुंचाई तो तुहें क्या लगता, क्या जेड़ा प्रेरणा ऐसे तुहां देना चाहेंगे बच्चों जो या युवा पीढ़ी जो?
1: पीढ़ी क्या देना चाहेंगे कि जेड़ा जे गंदे नशे ने है पचा के सरकार ते बंद हो जान ता नहीं गंदी आदत च पी सकदे बच्चे।
0: जी जी।
1: हाँ जी
0: जी।
1: कने जे नशे पिछे दे नहीं बंद होए तो फिर इन्हें तो निक्याण तो हूँ गंदी आदत च पौना पौना।
0: जी चलो, ये भी तो हाँ ठीक बोला दे कि ठीक है कि पीछे तो भी ये चीज़ा बंद होना जरूरी है ना, पर कुछ ना कुछ पेरेंट्स का भी बड़ा ज़्यादा रोल जेड़ा से रहता है ना जी। क्योंकि पेरेंट्स ही है बच्चे जो अच्छा ज्ञान भी दिंदा है बुरा ज्ञान भी दिंदा है ना जी।
1: अच्छा ज्ञान मोबड़े हैं दिन ताई गां बच्चे सीख दे।
0: जी जी जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। सही है ना कि हाँ कोई भी काम कर देना तो हमेशा हाँ ही सोच देना कि हाँ अपने बच्चों जो भी अच्छा ज्ञान देना है, चाहे छोटा बच्चा ही है हाँ उस जो भी बड़े प्यारे ने समझान देना जी।
1: हाँ जी हाँ जी। हाँ प्यारे ने गाइड कर गए ताई बच्चे गाइड होंगे।
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी। तो आज तो हाँ कुंदिया गीत चिड़े से सुनना पसंद करके जी।
1: दुनिया किथे जा रही है चल चलिए गोरा।
0: जी। दुनिया किथे जा रही है चल चलिए गोरा।
1: हाँ जी
0: जी जरूर है गीत तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा। ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशोतों तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्या। जरूर इस कार्यक्रम दे सफर च तुह सारे भी यहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने यहाँ कन्ने गलबात चिड़े से जरूर करी सकते। गलबात ये है कि हाँ खुद जो खुद पर विश्वास जिड़े से कितना की कर देन या सफलता दी और कितना की आज्ञा जिड़े से बढ़ देन। वैसे तो हर इंसान जिड़े से अपनी जिंदगी यही सोच रखता है कि यहाँ हमेशा अपनी जिंदगी जो सफल बनाना है कने अपने जिड़ा सपने न तिना जो जरूर जिड़े से साकार करना है। इसी कन्ने अगले जिड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देन गल बात। हेलो
2: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्ते जी, स्वागत है जी।
2: हां तो कालो काले पे आंदे कालो दिया फटफट कमान कालो दो बजन
0: जी। अच्छा इतना
2: मैं तो मैडम जी ना मैं तो कन्ने रेडियो ले जांदा फट के मैं बोले तो दो बजने पर के गाने का मिस होए ना संगीत चली जांदा मेरा
0: जी जी।
2: फिर बरखा में पुज जाने आज कर लिया रंग लाई तीन ता
0: जी आज कर लिया रंग लगाए ना
2: रंग लगाए थे मैंने ताली कर लिए ना आज बैठी है ना आज तो दिखी लिया तो हां
0: जी जी।
2: मैडम जी तो हां ना टॉपिक बड़ा छाल लिया आज मैडम बड़ा दिल खुश हो दा
0: जी। तो हां जरूर अपने विचार
2: मैं बोला मैडम जी एक तो चिट्टा ना इस बंद ही होना चाहिए था ना थोड़ा होना के दे बच्चे खराब करीते कई मरी जा दे कोई कुछ हो दा मैं बोला मैडम जी जो पकड़ो दे ना तीन तो मैं तो उम्र कैद दिया ना
0: जी
2: कदे नहीं प्रॉपर्टी जब्त करा मैडम जी कदे ना जेड़े मिले ना बंदे तीन तक प्रॉपर्टी पार्टी जमा करा
0: जी जी।
2: इन्हें बड़ा गंद पे मैडम जी छोटे छोटे बच्चे खराब कर छेड़े देखा कई माँ रो आई तीन बच्चे खत्म हो गए नौजवान मैडम ये तो बड़ा भारी होना चाहिए ना खरा मतलब खरी सख्त सख्त मंत्री हो रहे सख्त सख्त सजा देना चाहिए इन्हें अपने बच्चे तिने बच्चे मैडम जी
0: जी हां
2: जी हां जी इंसान सोच होना सारे इंसान सारे बच्चे ना कुछ तुम पता लगे सू पता पकड़ा तेने पूरे साथ दिंदी है पुलिस भी थोड़े कने बड़ा साथ दिंदी मैडम जी सर की बस कुछ सीआईडी मिल रहा है ना
0: जी।
2: एक भंग हो मैडम जी कने एक चरसा कने एक चिट्टा क्या चल रहा है ना पता नहीं पर बड़ा भारी खराब दुनिया मैडम हो सके मरते तो मुंडू छोरू है ना छोकरियां बड़िया भारी खराब से भी बेच आई मैडम जी देखा ला कितने मेरे कांड हो ना निकलनी है बच्चे मैडम कोई बड़े नहीं मैं चोर नहीं कोई सठा साल पचा दे इक्की साल अठारह साल देखा ला
0: जी
2: चिट्टे ने मैडम दुनिया खराब कर छड़नी ना
0: जी जी जी बोलना
2: हां जी मैडम जी यही बोलना ना
0: पढ़ाई
2: दी और ध्यान दिया पढ़ाई दान करा ना दूर बच्चा अपने मैडम जी सोचिए ना 80% बच्चे दे दें अपनी पढ़ाई वास्ते ध्यान ना कल 20% जेड़े कुछ नशे पिया दे निक्के दूए ने सह पा दे गंद जर के ना हां तो गंद मैडम कुछ नजर मिली जाए तो आते तू जकने हां कने कि कने मैडम जी जेड़े फेरिए फारिए वाले ओदे ना ये भी गंद पा दे मैडम बच्चे दे दे सूटे दस फलाना कर फिर राती चोरियां करा दे मैडम जी
0: चोरियां
2: जी बनना मत दे मैं तो बोलता ना सारे एक तो प्रधान चो पहला खबर करा कहीं आधार कार्ड चेक करा
0: जी जी
2: मैडम जी मर्द को 24 घंटे करा बड़े होंगे बाहर जनाब सभी होंगी है ना
0: जी।
2: कुछ करा दे बस नर्सी आ गई लो दे करो जना सभी आ रही कोई दिशा हो दी है ना चार चार दस दस
0: जी जी
2: गलत है ना मैडम जी बढ़ना नहीं देने करे मैडम जी
0: जी
2: जरूर आज तो गीत सुनना पसंद है ना बड़ा अच्छा लगता मैडम गीत तो लगे रहते
0: जी।

महाबोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने। इसी कने तोहा सारे सुनिया ये प्यारा देया भजन प्यारी देई फरमाइश कने तोहा सारे ही नाग पंचमी दा जिड़ा त्यौहार है पावन पर्व है से कल जिड़े से 17 अगस्त जो बने है तो जरूर तुहां श्रद्धा भाव ने पूजा पाठ भी किता होना है कने इसी कने अहां फिरी ते वापिस अपनी गलबात उपर पुजी होने गलबात करना भी जरूरी है कने जेड़ा तुहां दियां फरमाइशां से भी तुहां तक पहुंचाना जरूरी है क्योंकि जिंदगी चहां वास्ते हर काम करना जरूरी है। जिन्हां अहां वास्ते अपने माता पिता का मान सम्मान करना जरूरी है, जिन्हां अहां वास्ते खाना खाना जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है, पर से अहां पर निर्भर कर दे कि अहां किस प्रकार हर काम जड़े से सही तरीके ने कर देन। तो शो तो गलबात अहां जड़ा करा देन आज 18 अगस्त 2026 दी गल करिए ता आजकना जड़ा दिन मंगलवार का ये दिन है कने तो हाँ जरूर इस दिन जो भी इंजॉय करा दे उन्हें न कने जेड़ा माटी दी मेह कार्यक्रम दा सफर है उस जो भी इंजॉय करा दे उन्हें न नंबर तुह तक पहुँचाई दे न क्योंकि नंबर तुह तक पुजियोंगा ताई तो तुह तिस नंबर पर क्या करी सकते। समझदार हैं तुह सारे नंबर तुह तक पहुँचाई दी है नंबर है 701-8117091 नंबर तुह तक पहुँचाई तै बाकी जड़ा काम है से तुह है तो जरूर इस कार्यक्रम दे सफर चाह करने जुड़ा कने हाँ करने गलबात जड़े से करा कने जड़ा तुह दियाँ प्यारियाँ प्यारियाँ फरमाइशां सभी इस कार्यक्रम च तुह सुनी सकते। तो शो तो अहाँ अपनी जिंदगी च कोई भी काम करते न या सफलता दी ओर चलते न छोटा दिया काम छोटे कम्मे ते अगर अहाँ शुरुआत करते न ताई अहाँ बड़े जड़ा काम माने या बड़े जड़ा कोई भी अहाँ सपने दिखते न तिना तक पहुँची पाते न पर से यहाँ पर निर्भर करते है कि अहाँ किस प्रकार अपने जड़ा सपने न तिना जो साकार करते न क्योंकि सपने तो हर कोई चुनद है चाहे हर इंसान का अपना अपना सपना है। कई जो पेंटिंग करना करने का शौक है कई जो सिंगिंग करने का शौक है कई जो हर किसी का अपना अपना जेड़ा शौक है से अहाँ बोली सकते पर कई बार होता ना कि अहाँ किस कमे की शुरुआत करा देन कई जो खाना बनाने का भी शौक होता कने कई बार होता ना कि अहाँ तिस खाने जो बना देन पूरी लगन मेहनत ने तो तीसरा जिहड़ा टेस्ट है ना से कुछ बड़ी चढ़ी करी आंदा है। तुहां भी जरूर इन्हां गल्लां पर जिहड़ा गौर जिहड़े से करते होने न कने अगर अहां तिसी खाने जो बेमन बनांदे न या अहां दा मन नहीं है या अहां कोई भी वजह है तो से खाना भी बेमन ही बनता है या स्वाद नहीं बनता है या कुछ ना कुछ तिस कमी जिहड़े से जरूर रहती है। इसी प्रकार अगर अहाँ संघर्ष करा देन संघर्ष करी करी अहाँ अपनी जिंदगी जो जड़े से सफल बना देन जिंदगी जड़े से उतार चढ़ाव भरी है क्योंकि कुंडिया मोड़ जड़े से अहाँ वास्ते उतार चढ़ाव भरा होने से अहाँ जो भी नहीं पता है पर अहाँ फिर भी कोशिश जड़े से ज़रूर कर देन तो ज़रूर कोशिश करना अहाँ का काम है कने कभी भी हार जड़े से अहाँ ना मनन तो बड़ी अच्छी गाल है कोई भी काम में पूरी लगन ने करा जरूर तुह इस कमे च सफल होना है। इसी कने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह जो ले करी चलते न अगली फरमाइश की ओर तुह भी जरूर इंतजार जड़ा है से करा दे होने न कि तुह जड़ा फरमाइश है से कलू दी अहाँ तुह तक पहुँचाते न तो जरूर

0: है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि करने इसी करने तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश। इस भजन जो गया वे पम्मी ठाकुर जी ने कने जरूर तो हाँ सारे भी इंजॉय किया कने इस गीत की फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो वे प्रिया जी थी तो जरूर प्रिया जी तक अहाँ ये गीत ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। इसी कने अहाँ फ्री ते वापिस आई हो न कने बाकी जेड़ा श्रोता न सभी अहाँ जो व्हाट्सएप मैसेज भी करा देन टेक्स्ट मैसेज भी जरूर करा देन तो जरूर अहाँ तिना दियाँ जेड़ा फरमाइशा न से तिना तक पहुँचानियाँ न कने अगले जेड़ा श्रोता न से अहाँ कने जुड़ चुके हो न कर देन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: हाँ जी
0: जी तुहां अपने रेडियो सेट दी आवाज़ अगर कम करी लैन जी ता थोड़ी आवाज़ जेड़ा है से क्लियर जानी ना जी।
1: हाँ जी
0: जी करी ली तुहां आवाज़ कम रेडियो दी।
1: हाँ जी
0: जी तुहां कुत्थों दे रहने वाले ने कने तुहांदा नां की है जी।
1: बरखा लगना लग पी जी
0: अली लगी हो नहीं है
1: सनक सनक

0: लगी है जी।
1: जी अच्छा, लीजिए राइस है, थोड़ी थोड़ी लगी हो
0: हाँ जी,
1: जी। तो अपना नाम भी जरूर दस दिया जी।
0: नाम सिमलता,
1: जी अच्छा, जी तो
0: सिमलता।
1: जी
0: हाँ
1: क्या
0: जी,
1: क्या काम काज लगे जी, तो हाँ क्या करा दे।
0: ए डंगरे डुंगरे का कोई बड़ा दे, कपड़े कुड़े साफ किते, और क्या कमाना जी अहें।
1: जी अच्छा, और कोई काम काज नहीं है
0: और कोई कम कार नहीं जी।
1: जी। ता रेडियो गुंजन रोज ही सुनते तू, हाँ रेडियो गुंजन दे कार्यक्रम
0: हां
1: कदे लग दे तू जो कार्यक्रम जी।
0: जी, बढ़िया लगती है जी, ता यहाँ फोन किया जी। हां
1: सीता ता खरी गल है जी, तू हाँ सुनते कने तू हाँ फोन किता
0: जी,
1: जी।
0: हां जी,
1: जी ता आज हाँ जेड़ा गलबात करा देना से करा देना कि हाँ अपनी जिंदगी च क्या चाहते कि यहाँ सफलता दी ओर बढ़ना जी।
0: हाँ जी,
1: जी ता तुहें क्या लगता, कई बार होता ना कि हाँ कोई भी काम करना लग देना या शुरू कर देना तो हाँ थोड़ा दिया डर देना या हाँ ये सोच देना कि यहाँ इस काम जो नहीं करी पाना है या हाँ ते नहीं होना है, तो तुह क्या जेड़ा सोच रख देनी दी ऊपर।
0: क्या रे हो दसना तो हूँ।
1: जी थोड़े दे विचार अपने, क्योंकि हर किसी दे अपने अपने विचार होंगे ना जी।
0: आहां दे विचार जी, आहां सी आहां दे बच्चे भी आ नोई तरक्की करन,
1: जी जी
0: गाइड करन आहां। हां
1: जी
0: जी, कने
1: जी ता
0: अजकल दे हालात तो बड़े खराब होना लगी ओड़े। हां
1: बड़े ही खराब हैं
0: जी,
1: जी, तो
0: आहां
1: जरूर
0: सोच दे
1: दीदी
0: कि सारे बच्चे आहां दे जेड़ा भी आड़ पड़ोस है जी
1: जी
0: ठीक ठाक रहन, कि
1: जी
0: नोई पढ़ी लिखी के तरक्कियां भर जान।
1: जी हर पेरेंट्स यही
0: जी,
1: चाहते हैं कि बच्चा जेड़े से हमेशा तरक्की करे ना जी,
0: हाँ जी, हाँ
1: क्योंकि पेरेंट्स दी हमेशा यही रहती है कि बच्चे आगे बढ़न अपनी जेड़ा सपने न तिना जो साकार करना ना जी।
0: जी,
1: पर थोड़ा
0: जड़ाई
1: दिया
0: सपने
1: बच्चों ऊपर अगर गौर करिए तो बच्चे जो भी समझना जरूरी है कि पेरेंट्स किस प्रकार अहाँ वास्ते सोच रखता है या हाँ किस प्रकार अपने पेरेंट्स वास्ते सोच रखते हैं ना जी।
0: जी, हाँ जी,
1: जी क्योंकि अगर अहाँ दोनों साइड से दोनों साइड से चल दे ना ताई अहाँ इस कम में जो करी पाते हैं ना जी।
0: हाँ जी,
1: जी जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद करगी जी।
0: जो भी तो हाँ सुनाना चाहते हो सुनाई दे। हाँ
1: जी की तो हाँ अपनी पसंद आ दसी दिया जी, यहाँ जरूर तो हाँ तक पहुँचाएंगे
0: डमरू वाला,
1: जी। अच्छा डमरू वाला सुनना, पीछे ते आवाज़ा दे देना जी की डमरू वाला सुनना
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी जी जरूर तो जेड़ा फरमाइश है से तो तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते
0: हाँ
1: बड़ा
0: जी,
1: बड़ा धन्यवाद जी।
0: बड़ा धन्यवाद हो तो हूँ जी।
1: जी तुहदा भी तशो तो अगले जेड़ा कॉलर अन सभी हाँ जो कॉल पर कॉल करा देना तो जरूर तिना दी कॉल भी यहाँ जेड़ा अटेंड ऐसे करनी है तो हाँ जेड़ा कोशिश है से कर दे रहे, क्योंकि कोशिश करने वाले दी कभी भी जेड़ा हार है से नहीं होती। इसी तरीके ने एक कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुह तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक, 2 बजे करी 36 मिनट कार्यक्रम चो ही ना कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर लेंदे न गल बात। हेलो
0: हेलो, नमस्कार
1: हेलो नमस्ते जी।
0: जी। हाँ
1: जी स्वागत है जी तुहदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है ना
0: जी मैडम जी, ठीक ठाक जी। हाँ
1: जी। तो हाँ कुथु दे रहने वाले ने कने तो हंदा ना किया
0: मैडम
1: जी।
0: जी, मैं बोला था मजारना अपना जी,
1: जी
0: मेरा नाम जी संजय कुमार।
1: जी
0: हाँ, 4 बंदे ने मैडम जी काम कर देना, सुनता रेडियो रोज ही सुन दे प्रोग्राम ना 2 बजे का।
1: जी जी
0: हाँ जी, तो मैं संजय कुमार, राकेश कुमार, रवि कुमार, टीटू राम,
1: जी जी
0: पहली बार फोन लगाया मैडम जी, कहना पहली बार ही लगी है।
1: जी चलो धन्यवाद जी तुहंदा जुड़ने वास्ते, तुहां जेड़े ऐसे रेडियो गुंजन धर्मशाला च जुड़े कने तुहां जो कार्यक्रम पसंद होंदा
0: जी मैडम जी, बहुत बहुत पसंद होता, डेली सुनते। हाँ डेली,
1: जी जी ता तुहंदे क्या विचार है ना आज
0: मैडम जी विचार आंदे बढ़िया गवा
1: जी जी
0: ता हां जी।
1: जी जी तुहदी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं हो रही जी।
2: मैडम जी बारिश हो रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है।
1: जी जी अच्छा, बरखा लगी है उस साइड।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बरखा लगी मैडम। अच्छा मैडम जी, आपकी फरमाइश है ना श्यामो नार करनैल सिंह राणा दी आवाज दे ना।
1: जी जी
2: श्यामो नार सा सुनना चाहते ना।
1: जी अच्छा, श्यामो नार जेड़ा गीत है से तुहा सुनना है आज।
2: हाँ जी मैडम जी।
1: जी जी जरूर जी, तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहा तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
2: थैंक यू मैडम जी, धन्यवाद जी तुहंदा
1: जी। जी तो श्रोताओं, तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपने रेडियो दो शशि कहने। बाकी जेड़ा श्रोता न सभी अहां जो कॉल करा देना तो जरूर तिना दी कॉल भी जेड़ा से अहां जरूर जोड़नी है। कने तुम सारे भी फेसबुक लाइव भी जेड़ा से अहां जो दिखा दे होने न। कने जितने भी श्रोता फेसबुक लाइव कने या लिसनर जेड़ा न से फेसबुक लाइव कने जुड़ा देना, तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। कने गलबात जेड़ा से यहाँ करा देना कि जिंदगी च संघर्ष करना बेहतर जरूरी है। कोई भी काम है ना उसे बिना संघर्ष ते यहाँ जेड़ा से नहीं करी सकते। क्योंकि छोटी देही जेड़ा कहानी है, कहानी बोली सकते या जिंदगी जेड़ा से यहाँ जो हर दिन कोई ना कोई जेड़ा सीख है से दे करी जाती है। तशो तो एक जेड़ा घड़ा था से ठीक था, कने दूआ जेड़ा घड़ा था से थोड़ा टूटिया था। तो जेड़ा दो जेड़ा व्यक्ति थे से तिस घड़े जो रोज ही जेड़ा से भरी करी लौंदे थे अपने घरे जो। कने एक जेड़ा घड़ा था तिदा जेड़ा पानी सा से बिल्कुल मतलब तिस घड़े च जेड़ा से नहीं रहंदा था। कने पानी जेड़ा से सारे ही है पी आंदा था। पर जेड़ा दूआ घड़ा था से तो प्रॉपर तरीके ने घर पुजी आंदा था, क्योंकि से तो बिल्कुल ठीक था घड़ा, ना से टूटिया था ना कुछ होया था तिसियो। पर से घड़ा जेड़ा से ज़रूर पानी जेड़ा से सेफ सेफ ने घर जेड़ा से पुजी आंदा था। पर दूआ जेड़ा पानी है से जमीन पर जेड़ा से पी आंदा था। पर से कुथी ना कुथी जेड़ा दुए घड़े वाला जेड़ा व्यक्ति था से शर्मिंदा हो जाता है कि मेरा पानी जेड़ा है से गिरी आंदा है, कने मैं जेड़ा है से कुछ भी नहीं करी सकता। से अपनी जेड़ा जिंदगी है तिहा जो कोसना जेड़ा है से शुरू करींदा है। तो श्रोताओं, पर जेड़ा अगला व्यक्ति है बोलता है कि तेरा जेड़ा घड़े का पानी है से कुथी ना कुथी जेड़ा फूल न पौधे न तिना जो यानी कि लगा दा, कने सही फूल पौधे जेड़ा न से बड़े प्यारे लगते न। कने कुथी ना कुथी से फूल पौधे जेड़ा है से एक बड़ा ही बेहतर जेड़ा नज़ारा है से अहां जो दिंदे न। तो अहां जो यही सीख मिलती है कि अहां जो अपनी जिंदगी च कदी भी जेड़ा है से हार नहीं मनना चाहिए। अगर अहां हार मनना शुरू करींदे न तो कुथी ना कुथी हाँ अपनी जीवन जो तिथु ही सीमित जेड़ा से करींदे न। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
3: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
3: नमस्ते
1: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
3: हां जी ठीक ठाक है अल्लाह
1: जी। यहां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु ते बोला दे, कने तुहांदा नाम की है जी?
3: ओ कुकड़े जो बोल माए
1: जी, कुथु ते बोला दे?
3: सुकड़े ते माया
1: जी। सुकड़े ते माया जी।
3: हां जी
1: माया जी, कदे आ मौसम है सुकड़े वाले आंदा?
3: मौसम सवेरे तो बिल्कुल यही है ना, हुन बरखा रही भी है
1: जी। अच्छा लगी पी है सुकड़े वाली साइड भी बरखा?
3: हां जी जोर लगी बरखा
1: जी जी। तो माया जी, आज कुंडिया गीत तुहा सुनने है?
3: आज सुनाए गए तो आवे न फुल्ला न तोड़ मालना
1: जी। कुंडिया
3: फुल्ला ना तोड़ मालना
1: जी। अच्छा जी, ता इना फुल्ला ना तोड़ मालनी, इना फुल्ला च नाग बस दे ना जी?
3: हां जी हां जी
1: जी। ता तुहा कल नाग पंचमी दा जेड़ा पावन पर्व वे सभी बनाया ना जी?
3: हां जी हां
1: जी जी जी। ता जरूर ए गीत तुहा तक पहुंचांदे न, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहा।
3: बड़ा बड़ा धन्यवाद, धन्यवाद जी तुहाडा भी। नमस्ते
1: जी जी। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर दे न गल बात। हेलो हेलो
4: नमस्कार महाराज जी।
1: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
4: बिल्कुल महाराज जी, ठीक ठाक जी।
1: जी ता तुह कुथु ते बोला दे, कने तुहंदा ना के है जी?
4: मैं जी डाड ते बोला दा, मेरा नाम हरदेव है जी।
1: जी डाड ते बोला दे हरदेव जी।
4: जी महाराज
1: जी। ता हरदेव जी, क्या काम कार लगाया तुहा, क्या करा दे आज?
4: ना कम कुम तो कुछ नहीं लगाया, एक घंटा हो गया बरखा लगी हुआ है।
1: जी अच्छा,
4: बिजली के गड़ाके लगे हुए ने, कने फोन ने सुना दा हा ते लगा टाइम, महा मैं निकल लेंदा फोन।
1: जी अच्छा, टाइम तो हां जो भी लगी है फिर तो हां सोचे फोन कर ही लंदा है ना
4: जी। हां जी, टाइम भी थोड़ा रंदा है नहीं मैं। हां
1: जी
4: जी, हां जी, कल भी सुनदा रे, अब टाइम नहीं लगा।
1: जी अच्छा, कल सुना दे थे पर टाइम नहीं लग गया।
4: जी महाराज
1: जी। जी ता हरदेव जी, गल बात तो हां मेरी जरूर सुना दे, उने की नहीं सुना दे थे?
4: सुना भी कर दे महाराज, कभी तां जाना पड़ा, कभी तां जाना पड़ा। हां
1: जी, ता रेडियो भी करने करने ही रखा तो हां।
4: हां जी
1: जी जी। ता जी ता जीवन च संघर्ष हां करा दे ना जी?
4: जी
1: जी। ता हां जो कभी भी जड़े से हार जड़े से नहीं मनना चाहिए ना जी, तो हां क्या लगता?
4: हाँ जी हाँ जी, ठीक ला ले जी।
1: जी जी, क्योंकि तो हम भी अपनी जिंदगी दा जेड़ा तजुर्बा ऐसे दिखया ना जी, संघर्ष तो हम भी कित्या।
4: बिल्कुल
1: जी,
4: मतलब ऐसा है कि जिंदगी विच अपनी मतलब हार नहीं मनना चाहिए, कहना मनना भी चाहिए
1: जी।
4: बड़े आगे हार मनना चाहिए, छोटे आगे नहीं मनना चाहिए, छोटे समझाना चाहिए, बड़े दी अकल लेना चाहिए
1: जी। सही है ना, कि से फिरी ते गल आटी फिरी सोच पर ही आई आंदी है ना जी।
4: हां जी हां जी,
1: क्योंकि ये आंदी जेड़ा सोच है ना, से हां पर निर्भर करदा कि यहां क्या सोच रख दे ना जी। क्योंकि अच्छा सोचते ना ताई यहां बेहतर जिड़े से करी पांदे न। ठीक है, छोटे जो बड़े दा कहना मनना भी जरूरी है, बड़े भी छोटे जो समझांदे ने कि कोई भी काम करना है तो हाँ इस तरीके ने करना है, या ये काम तो हाँ गलत कित्या, अच्छी गल है। हाँ जो भी कोई ना कोई जिड़ा सीख है से बड़े ते मिलती है ना जी।
4: मिलती है महाराज
1: जी, ताई यहाँ अपनी जिंदगी च तरक्की कर दे, ताई यहाँ आगे बढ़ दे ना जी।
4: हाँ जी, पूरी गल ये है कि अपनी सोच क्या है बड़ी रखना चाहिए
1: जी। जी
4: हुँ?
1: जी
4: हाँ जी
1: जी। ता हरदेव जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
4: हाँ जी, यार मैं गीत सुनना, ये डुगियां डुगियां नदियां पुराना पिया पेड़ा, कौन नहीं पकड़ी मेरी बाह, सतगुरा पकड़ी मेरी बाह।
1: जी जरूर है, भजन तो हाँ तक पहुँचा दे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुम्हारा।
4: धन्यवाद महाराज जी।
1: तो शो तो अगली जेड़ा फरमाइश है तुम तक पहुँचा।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। ये फरमाइश जहाँ तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाम है ओम प्रकाश जी कने रहने वाले ने आदमी ते तो जरूर तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कने अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचाते हैं तो सारे भी इस प्यारी दी फरमाइश जाजू इंजॉय करा।

0: जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना। अगली फरमाइश जरूर तुह तक पहुँचा देना, तुह सारे भी इंजॉय करा।
1: रेलगाड़ी में जाता है।

श्रोताओं तो सारे सुनिया प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश तो तिना दा जेड़ा नाम है सभी जरूर तीन तुहां तक पहुँचाई देन संजय जी राकेश जी राजू जी टीटू जी तिना तक कहा ये फरमाइश पहुँचाई कने तुहां सारियां भी इंजॉय कीती कने समय जेड़े सुना हाँ जो बार बार इशारे जरूर करा दे पर अगली

तो जरूर फुला दी क्यारियां च ही रहिंदी है ना, क्योंकि फुल जेड़ा ना सिर्फ कुछ ना कुछ आंजो अपनी ओर जेड़ा इसे आकर्षित करते हैं ना, क्योंकि पहाड़ों का सौंदर्य

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपने रेडियो दो शशि कन्ने कन्ने कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से उन्हें हम जो बोला था कि तो हाँ उन्हें अनुमति जेड़े से जरूर ले लिया तो इसी कन्ने हाँ अनुमति भी लेनी है कन्ने तो हाँ सारे ही अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा कन्ने अपने दा ख्याल भी जरूर रखा कन्ने नहीं अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जेड़े से सुनते रहा।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर।

0: बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू की चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: प्यारी दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

सुहानी नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मतलब बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तुमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
14: वही असली तरक्की।
13: एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर दिन हिंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ सभी उड़ने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा, कैसे श्रोता तो सब उम्मीद कर लो खरे भूने न और खुश भूने न अपने घर है मंच और खुश रहना अक्सर बनो श्रोताओं की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी वास्ते, हर एक शख्स वास्ते है ना, जो कि वे भैया है कलयुगी दुनिया में रेव कर दिन जड़ी कोई के सिरा नहीं है ना, लेकिन लेकिन लेकिन श्रोताओं कोई के सिवे नहीं, लेकिन जो परिवार रे सदस्य हैं सो अपने ही बुंदे हैं है ना। तो सब कार्यक्रम मन जुड़ी सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं 7018879 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करना साझा करना हाँ 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया श्रोताओं सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र से जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गल्ला रहा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक श्रोताओं जरूर हुआ। बहरहाल तो धर्मशाला रहा मौसम किया सो खरा रहे हो श्रोताओं, इवन कि आऊँ भी किया सो थोड़ा करे सिजी गो हा और बिल्कुल कजो कि ब्यागना मौसम किया श्रोताओं सो थोड़ा करे खराब खराब थो बरखा थी हल्के फलके, लेकिन अब जो भी गल करिए तो अब जो किया सो थोड़ा करे मौसम ज़्यादा बरखा किया सो वो है श्रोताओं और थोड़ा मौसम किया सो वही तो ब्यागना ठंडा थो, लेकिन अब जो और ज़्यादा ठंडा किया सो कुछ को तइए जी आगाज़ कर लेंदे कार्यक्रम पर गीत सोगे और आगाज़ तो बाद श्रोताओं फिर बहुत सारी जानकारी जो सोगे शेयर करनी ने साझा करनी है बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप अगेन सो उन कर दें ना आरजे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव था चले जी हिंद है श्रोतागण के अंत सो के कनेक्ट आप भूना लगे पे हिन उस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन श्रोतों और तथों बाद इंदे जानकारी भी सोगी चलती बहन इन और जानकारी सोगी श्रोता हूँ बिल्कुल।
1: हेलो नमस्कार।
0: हेलो नमस्कार जी। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया जी। कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
1: बागनी तो बल्लू कर दाता मेरा ना जरूरी
0: ना बागनी थो बल्लू दिन और क्या ना जी
1: जतिन
0: सचिन
1: सचिन जतिन।
0: अच्छा जतिन जतिन जी ठीक ठाक ने राजी बाजी ने चले जतिन जी आऊं तुसु बिछाणी को तो बागनी थो हिन और तो पहले भी किए सो इंदे लाइव कार्यक्रम में कॉल कर रहे था जतिन जी कुन दिन गीत थोड़ा पसंद कर ले पहले तो ये दस दिया
1: आऊं गिरडा माए
0: गिरडा माए ठीक है जतिन जी जरूर तुसु ये गीत है हुन ले है ना जी
1: अजय बरमोरी मैं सुनना
0: हाँ जी अजय बरमोरी ये गूर है गीत ठीक है जी तो है एक फरमाइश देते हैं जरूर पूरे बोने तुंदे है ना जी ठीक है धन्यवाद। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन तो है ट्यून कर रो रहा हूँ सचिन कपूर इन द अगले श्रोता का सोगे कनेक्टेड है नमस्ते जी।
2: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी रेडियो नमस्ते जी रेडियो सेट रे आवाज धीमी कर दिया
2: सब आ सब हेलो नमस्ते भाई
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन
2: भाई मैं खने आते टिंकल बोला।
0: अच्छा अच्छा टिंकल जी किने कदे खने आ रहे मौसम कदे या
2: मौसम ठीक ही है बरखा हटी होनी।
0: अच्छा और जोरदार बरखा हुई थी
2: हाँ जोर अभी है।
0: अच्छा अच्छा ट्विंकल जी क्या गीत सुनना चाहते ना कौन दिन गीत
2: बाग बगीचा
0: बाग बगीचा सब सूखे पे गए।
2: हाँ जी
0: ठीक है ट्विंकल जी जरूर सुन ले
2: ठीक है धन्यवाद भाई जी
0: धन्यवाद जी। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो होगा बढ़ते हैं और बाग बगीचे जरूर फरमाइश पूरी कर ले शांतरा गोरा गीत था इन अगले श्रोता सोगे कनेक्ट हो चुके। नमस्ते जी।
3: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते ठीक ठाक ना
3: जया मेरा उस मालिक दी जी
0: नोर कर कर लग रहे हैं
3: बस ये कर रहा लगना अंबर लग रहा हूँ बड़ा बड़ा बरखा हुए है रहा हाँ तो आप थोड़े जरा निम्बल बची हुआ
0: काफी तेज बरखा हुआ जी
3: जी महाराज जी
0: क्या करना है बराबर है
3: उस मालिक दी मौजा दी आइस करना तीन है गुना जी
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और बरना भी तो चिंता है ना जी
3: बिल्कुल बरना चिंता जी।
0: हाँ जी काला महीना शुरू है वह
3: हाँ जी
0: सब
3: अगल अक गल बोलना चाहता जी
0: जी जनाब जरूर बोला
3: बंदे ना पुत्रा का जेड़ा दुख हुंदा सो बुढ़ा नहीं रही सकदा
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: हैं आज बुढ़े का दुख के सो पुत्र
0: एरी लंदा ठीक बोल लूं देन तो है
3: दुई गल है के अक इया हुआ के अक मतलब दुई अक मां ते अक बहन थेरी है बुढ़ा ते अपू।
0: अच्छा
3: सो मत्था टेकना सूरज है अक दिन
0: चुमंडा मंदिर
3: जी महाराज
0: जी
3: आजा तस गोबरियो सो लगू फोटो लेना तो फोटो लंदे लंदे तो सी मिर्गी चली आई
0: जी
3: तो बूढ़े चुक्कू जट बटे अपनी कारा लेंदू।
0: अच्छा
3: अच्छा कारा लेंदू तो

0: पता होता कि एम्बुलेंस हिंदी आता समान जो पता कि एम्बुलेंस आए तो दूर दूर अपने आप ही बची आंदे हैं रिश्ता भी निकाह नहीं कर दे गल तो
1: जी
0: नहीं अपनी कारण पाउदा हो तो
1: जी
0: से तू ना पता लगे कि हम चौदह कठी अगर गाना कठे हैं
1: जी
0: तेनिया कार भी इतनी बगाऊ दी कि जेड़ा अगला टेंपर होंगे ना
1: जी
0: सो अक्की जगह बचकाई ता
1: जी
0: टटियों बचुआ सो फिर इंदा इंदा सड़क किनारे कभी सड़क किनारे चला कभी और चला तो मन ये सोचना चाहता कि एम्बुलेंस दस पता लग जाता कि एम्बुलेंस है दूर है दिन अगर सो दिन गड्डी इंदी है तो अस जो हटना चाहता
1: हाँ बिल्कुल 100% हाँ जी, ये तो
0: हटना
1: कॉमन
0: चाहता
1: सेंस है ना
0: तो
1: जी।
0: हाँ तो कहेंगे दो चोर मन सो बच गया तू उपरांत सो हॉस्पिटल आए सवेल आए आधे घंटे बाद गुरु ठीक बजियो फिर तो असं चले तो असं बोलो तू तो चलना तो उस सब चल तू तो आपू तो गबर जो तो ठीक ही बची गो तू तो आपू भी गाना तो पिछले बहुत भी इन्ना भी खराब होना
1: 100%
0: तो चलने लगो बोलना बल्ले आज मुझे तो पता नहीं रहा कि बुआ क्या बोलो मतलब तू नहीं होश भी ना रखना चाहिए कि बेहोशी ना बची गाना चाहता
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: अक्की चीजा वास्ते कई जवानी चली जाती
1: चली जाती जी।
0: फिर मैं तुझे बोलो आवे ठीक है बोलो गलती जब गलती ना बची है तो चोर मन तो बच्चे ले लेने ही है कि 4 बजे का टाइम था
1: और ना
0: हाँ
1: इंसान रा अक डिसीजन के सो सेरी पूरी लाइफ खराब करी दिंदा पता।
0: जी हाँ जी
1: अक डिसीजन सिर्फ अक डिसीजन तो सु लेना तो सो पूरी लाइफ मन चेंज ले करी चली दिंदा पूरी लाइफ के सो बर्बाद करींदा अगर सो डिसीजन के सो सही ना बोता।
0: हाँ जी आते मन यो चिंदा के कोई सो एम्बुलेंस सुख जी आंदी कई गड्डी ऐसी बड़े तीरा हो गई इंदी तो तुम्हें बक्या ना चिंदा हाँ
1: जी सही
0: जी
1: ना जी
0: अच्छा जनाब आज गीत सुनना
1: जी
0: जोते पेउरा हीना वो गदिया जोते पेउरा हीना दस
1: अच्छा क्या बात है पर हीना तो प्यूरे नहीं जोते है।
0: सही पेउरा महाराज जी
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: लगी भी रहा
0: ओ जी लगी तो कन्या किनारे हजू करदा
1: चलिए ठीक है जनाब जरूर होने ले तू सोए गीत ना जी।
0: ठीक है महाराज जी
1: ठीक है जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी
1: दर्शकों तो ये सब बन रहे ने समय आरजे सचिन कपूर सो की फरमाइश और दौर के सो शुरू करींदे गजो किंदे बहुत सारे श्रोता गेन सो इंतजार करू करते हैं कि सब फरमाइश अगेन सो पूरी ज़रूर भून और अक्सर इंदे भी किया सो कोशिश रहती है श्रोताओं की फरमाइश अगेन सो पूरी है ज़रूर करना और फरमाइश सो की किया सो जानकारी का सिलसिला भी है ज़रूर खोलना और जानकारी भी ज़रूर साझा करना।

শত এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর বেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা বিলকুল লাইভ হন কর দেন আপনি আপনি রেডিও সেট মা বেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্চ আইয়ে শ্রোতম কার্যক্রম যা হোক বড় দেন আর আগলি জানকারি হোক তুস রুবরু করবেন্দে হিন स्मार्ट सिटी धर्मशाला में पैदल यात्री री सुविधा रे वास्ते बनाए गए छूरा फुटपाथ पर वाहन री पार्किंग भी समस्या क्या सो लगातार बढ़ो कर दे हाशोतों बाकी जगह भी लेकिन खास कड़ी बढ़ो कर दे या पशु चिकित्सालय धर्मशाला रे बाहर भी वाहन री मनमानी पार्किंग बुच्छू कर दे अब हम दसना चाहता कि पशु चिकित्सालय हम कड़ी री गल करूँ कर दे वैसे तो बहुत सारे मनु क्या सो बाखूबी जाने के भुने ने कि इंदा डंगर हॉस्पिटल किया सो ठाणे बार किया है ना ठाणे उपली साइड श्यामनगर रामनगर रोड पर किया सोतड़िया पशु चिकित्सालय है ना तो पशु चिकित्सालय धर्मशाला रे बाहर भी वाहन जो वाहन हीन त्यारी मनमानी पार्किंग रे कारण कुछ ऐसी ही स्थिति की असो हेरने जो मुड़े हाश होते चिकित्सालय रे बाहर पैदल यात्री री सुविधा रे वास्ते बनाए गए फुटपाथ रे उपयोग किया सो वाहन चालक करू कर दे हिन छोतों और पार्किंग रे रूप में गया सो करू कर दे हिन छोतों फुटपाथ रा बड़ा हिस्सा वाहन री पार्किंग में उपयोग भूने रे कारण पैदल यात्री जो कई बार किया सो सड़क पर उतरना पे करता है और कई बार किया सो मतलब जोखिम किया सो चुकना पे करता है छोतों करोड़ों रुपया खर्च बुछूरा स्मार्ट सिटी परियोजना रे अंतर्गत बनाए गए छूरे इंजा फुटपाथा पर छोतों फुटपाथ रा उद्देश्य कह तू कि मनु वो अच्छी सुविधा देना है ना तो जने स्मार्ट सिटी मंज करोड़ों रुपये खर्च बछूरा भी और आगू भूना भी और ज़्यादा चीज़ अगेन सो इम्प्लीमेंट भूनी हीन लेकिन ठेरा प्रयोग किया सो कुछ और ही बुछू करता है ठेरा उपयोग किया सो तो दस नसंदा सो कुछ और ही बुछू करता है जो कि वर्जित नहीं है बिल्कुल अपराध आए अगर फुटपाथ किया सो मनु चलने उनुरो तड़िया है गड्डी के न सो खड़ेरी छू कर दे हिन और गड्डी भी जड़ी तक रहूँ तस्वीरें रू कर दे मोटी गड्डी ने कोई थार आ कोई स्कॉर्पियो है ना बड़े बड़े गड्डी तो बड़े मनु बड़ी गड्डी और बड़े दिमाग फेरे है तो मनु जो चलने वास्ते सो फुटपाथ है तो तस्वीर उपयोग करने दे तो खबर है सिर्फ पशु चिकित्सालय धर्मशाला रे लाया लेकिन अन्य जगह भी हैं है योल रे रिले तो है योल तो अगर तू पैदल क्रॉस करना था बिल्कुल जान के सो जोखिम अंदर हा बुंदे हा कजो की तड़ी इतना करी तो रोड आ सो फुटपाथ हुए नहीं है और जड़ी फुटपाथ इन तड़ी गड्डी खड़ी कर छू कर दी था इंसान क्या सुखड़िए भी मुझे लगता कि सुख ही नहीं है बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बृंदन तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो गए कार्यक्रम होने कर देन हिंदी अपनी गप्पा लेकर चलते श्रोता हूँ तू सब भी जो कजो की हिंद है रेगुलर श्रोता हिन हरदेव जी तो बल दे कि भाई जो ते पे ही कुछ रही ना तो फिर ऐह भी मननी लेंदे कि पे कुछ रहा नशो तो मनने तो किया मनने तो रिश्ते खरे बुंदे बेहतरीन बुंदे हिन कि दुए मनना पैंता कि दुए समझना पैंता तो रिश्ते के सो अच्छे बने गंदे नशो तो खुद बखुद और ईगो रखना कि दुए तो रिश्ते हमेशा ईगो किया सो खराब करते हैं।

चिट्टी चादर बछाई थल्ले बर मिए ढकना के लैना हो। ये गीत बड़ा याद बुना तुसु सभी है ना। जो कि शतों गीत के असो 13 साल पहले यूट्यूब में पेगी छू रहा और 13 साल पहले बहुत सारे मनुगे ने सो जवान बुने न तो अपने अपनी जवानी रा गीत के असो सभी याद आ भी बुना हर शतों। चलिए इस गीत का आनंद है कि असो जरूर ले ले बरहाल असूल फरमाइश के अनसो बड़ी ज्यादा न और फरमाइश असो किसो के शतों कुछ एक जानकारी के अनसो भी तुसु तक असो जरूर पहुँचानी हिन जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं शोतों। तो जानकारी रहा सिलसिला के असो थोड़ा करे और हगू बढ़न दे हिन और लेकिन चल दे तू सब ये जानकारी रही और शोतों मौसम विज्ञान तो जुड़ रहे जानकारी है। प्रदेश में मानसून अकमोके फिरी के असो तेवर दसो करदा हा शोतों। हाले तो सिर्फ दो घंटा या डेढ़ घंटा त्राई घंटे ऐसे ऐसे बरखा के असो तेज तरार पुचू करते हैं लेकिन आओ दसना चाहता मौसम विज्ञान केंद्र शिमला है कि असो अगले 5 दिन दौरान की असो प्रदेश के कई हिस्से में भारी बरखा चेतावनी की असो जारी करी है शोतों। आओ दसना चाहता 19, 20 और 21 अगस्त जो अलग अलग स्थान पर के असो भारी बरखा रहा अलर्ट जारी करो हर शो तो 22 और 23 अगस्त जो कि असो किसी तरीके का कोई अलर्ट या चेतावनी की असो नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त जो कि असो सब तो ज़्यादा बरखा रे संभावना हर्षो तो इस दौरान कई स्थान पर कि असो हल्की तो मध्यम बरखा बुझे सकती है जबकि कुछ जगह पर के असो भारी तो बहुत भारी बरखा बुझे सकते हाशो तो 19 अगस्त चौबीस किया सो कई क्षेत्र में हल्की तो मध्यम बरखा रहे सोगी कुछ स्थान पर भारी बरखा भूने रही संभावना है। 20 और 21 अगस्त जो किया अलग अलग स्थान पर श्रोतों भारी बरखा के असो बुझे सकती है। फिलहाल मौसम विभाग की असो जारी करी चेतावनी तेज हवाएं की अन सो चली सकती हैं तेज हवा के असो चली सकती है। तो अपना ख्याल के असो जरूर रखने श्रोतों और हमेशा बोलना कि तुंदा सभियों अच्छा दोस्त तुंदा सभियों अच्छा मित्र पहले तुंदा शरीर है और भगवान रा धन्यवाद करा कि भगवान ने किया सो असु पूरे शरीर रे अंग के नसो दित रहे न और है सही सलामत के न सो चली फिरी सकू कर देन खाई कमाई किया सो सकू कर देन तो ठेरे तकर भी भगवान न रह गया सो बैग उठ करी जरूर धन्यवाद किया सो जरूर करू करा। बहरहाल हगू चल दें श्रोता है सब श्रोता और फरमाइश में दसो की दौर ज़्यादा है कमल नहरी रहा गीत है श्रोतों जो फरमाइश आए थे चंदनी गीत दसो कर दे थी है चंद्रारी लोहा गीता जो टाइटल है श्रोतों सो चंद्रारी लोहा ता जरूर यह लोई जो भी किया सो लाइन देन बनी रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे

शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर हेवेरी गुंजन धर्मशाला हो रहा हूँ सचिन कपूर कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही और आके लास्ट जानकारी किया सो काफ़ी ज़्यादा किया सो तुस सभी जो हिलाई सकते हैं शतों आत्महत्या रखे सौदस्व करदा बड़ू करदन और आत्महत्या करने वाले विवाहित सब तो ज़्यादा हिन यानी कि जो छड़े न सो खुश हिन और जो बह करूदन जो भ्यूर है बहुत रहे न सो आत्महत्या करू करदन जनाब देश में आत्महत्या की स्थिति जो लेकर सामने आंकड़ा की है चिंता का विषय है सभी वास्ते श्रोताओं चिंता बढ़ाऊ करता है। राष्ट्रीय स्तर रे आंकड़े रे अनुसार हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 रे दौरान कुल 813 आत्महत्याएं दर्ज बछूरी हिन इति में से 530 विवाहित हिन और लगभग 270 अविवाहित हिन और 8 अन्य श्रेणी वे मामले के सो सामने आए हिन श्रोताओं आंकड़े अनुसार अगर हम गल करूँ तो आत्महत्या करने वाले मंज पुरुष भी संख्या की है सो महिला तो काफ़ी अधिक हा यानी कि मर्द की है सो सुसाइड करू करता है विवाहित जोड़े मंज श्रोतों दसना चाहता है श्रोतों प्रदेश 813 मामले में 564 पुरुष न और 249 क्या ना माफ करा 250 महिला शामिल हैं श्रोतों अविवाहित वर्ग में 200 पुरुष और लगभग 70 महिलाएं जबकि विवाहित वर्ग में 2355

तै ये खबर पूरी किया सो चर्चा किया सो जरूर कर ले और टॉपिक किए सो जरूर रख ले सो तो फिलहाल तो समय बच गो लेकिन वाकई में थोड़ा करे हैरान और परेशान करने वाला और चिंता करने वाला ये विषय है कि 813 आत्महत्या दर्ज बुछूरी जति में से 530 विवाहित जोड़े हिन जिन्हें आत्महत्या कर रही है। तो फिलहाल हम तो ये बोलना चाहना कि अक्की दुए समझा अक्की दुए अंडरस्टैंड करा जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है सो तो अक्की दुएरी फैमिली जो समझना कि सो बहुत ज़्यादा जरूरी है सपोर्ट करना कि सो बहुत ज़्यादा जरूरी है सो तो अक्की दुए जो है ना और इं रह लेता है कि सो घर परिवार चलता बाकी गृहस्थी गृहस्थी बड़ा कुछ बुंदा मुझे लगता कि गृहस्थी की सो कड़िए बिना मतलब जिन्हें गृहस्थी कर ली तिन्हें PhD करी ली जो विवाहित बुजुर्गो और जो अपनी गृहस्थी खरीदी ते संभालो करता चलाओ करता शख्स सो PhD होल्डर है। बहरहाल हम सचिन कपूर ले लेनो इजाजत मुल दिन फिर चाहिए तो वाट गुड इवनिंग धर्मशाला मंच नमस्ते धर्मशाला हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे माँ बाप की सेवा जरूर करा श्रोता और पशु पक्षियों की प्रेम जरूर करा और पर्यावरण रखे याल।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रूम से चटनी चढ़ाया।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया है, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
5: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
6: मामा, नो शेयरिंग।
5: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
6: कौन था?
5: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
6: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
5: स्मार्ट गर्ल।
6: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
5: याद है ना, नो शेयरिंग।
6: मामा,
7: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
8: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
9: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
12: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
11: क्यों?
12: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
13: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
15: मैं तो बुरी।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर आप सभी के रेडियो सेट पर हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। आप सभी को ज्ञात है, जितने भी हमारे रेगुलर श्रोता हैं, कि इस कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है वो तो खुलता ही है, साथ ही साथ अगीत संगीत भी जो है वो चलते हैं श्रोताओं। तो इस समय धर्मशाला के मौसम की बात करेंगे हम। सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय धर्मशाला का मौसम बना हुआ है श्रोताओं। नमी की बात की जाए, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, तो नमी इस समय जो है वो 90% के आसपास बनी हुई है। विजिबिलिटी 8 किलोमीटर तक बताई जा रही है श्रोताओं। और मौसम इस समय जो है वो धर्मशाला में बरसात जो है वो नहीं हो रही है, हालांकि इससे पहले करीबन 2 बजे जो है वो बरसात काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई थी श्रोताओं, है ना, 1.5-2 बजे के बीच बरसात हुई थी और करीबन 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा बरसात जो है वो धर्मशाला में देखने को मिली है। जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा जो है वो श्रोतों यूं ही चलेगा। और बरसात चली हुई है, बरसात आ रही है, तो इसी बरसात में ये गीत तो ज़रूर बनता है, सुनने का मज़ा आएगा ना श्रोतों, आएगा मज़ा अब जी बिल्कुल। इस गीत का आनंद लेते हैं, आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

सो तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने सुना, वेड़ी गुंजन धर्मशाला में 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आएगा मज़ा अब बरसात का। अंदाज मूवी से लिया गया ये गीत था श्रोताओं, और अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो सुप्रिय की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपने सुना श्रोताओं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी इस समय बने हुए हैं रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ। ये मौसम क्योंकि बरसात का है श्रोताओं, तो इस प्रकार बरसात जो है वो चलती रहेगी होती रहेंगी। बहरहाल आप सभी नदी नालों के साइड ना जाएं, अपना बचाव जो है वो ज़रूर करें श्रोताओं, है ना जी। और अपना बचाव अगर आप करेंगे श्रोताओं तभी आप सुरक्षित जो है वो रह सकते हैं। लैंडस्लाइड वाले इलाके में जो है वो ना जाएं श्रोताओं। इन खास बातों का ख्याल जो है वो ज़रूर रखें श्रोताओं। श्रोताओं आज के विचार की ओर चलते हैं। कहते हैं कि जीवन के अच्छे दिन उन्हीं के साथ बिताएं जो आपके बुरे दिनों में भी आपके साथ हैं। जी देखिए, इंसान की जीवन में जो है ना वो ज़रूर बुरे दिन भी आते हैं। इंसान है तो अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन जीवन के जो अच्छे दिन है ना वो ज़रूर उन लोगों के साथ आप रहें, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिन्होंने बुरे दिन जो हैं वो आपके साथ देखे हैं या बुरे दिनों में आपके साथ रहे हैं। तो इस बात का जो है वो ख्याल बखूबी रखें। हम सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए या अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, है ना। तो अभी चलो जो भी समय चला हुआ है वो अच्छा चला हुआ है ना। अगर हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हमारे परिवार में हमें कोई दुख बीमारी नहीं है, हम हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, तो मतलब हम सुखी हैं और हमारे अच्छे दिन इस समय चले हुए हैं। लेकिन जब ये दौर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगना शुरू हो जाएंगे, बीमारियाँ घर कर लेंगी, तो फिर वो आपके बुरे दिन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं श्रोताओं। उस समय देखना कौन आपके साथ खड़ा होता है और कौन नहीं, और उस समय जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है वही आपका अपना है श्रोताओं। बहरहाल लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूँ ही।

शो तो होना भी तो चाहिए ना, दिल का रिश्ता प्यारा है ना, और जानता ये जहाँ सारा है। जब रिश्ते प्यारे होते हैं, बेहतरीन होते हैं, अच्छे होते हैं श्रोताओं, तो वाकई में ही जान जो शहर है हमारा वो भी जानता है। तो रिश्तों को प्यारा कीजिए, अच्छा कीजिए और बेहतरीन कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। बहरहाल हम लेके चलते हैं आप सभी को, आप सभी इस समय बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। अपना बहुत बहुत स्वागत है जी सभी सुनने वालों का। और धर्मशाला में काफ़ी तेज़ तरार बारिश जो है वो हो रही है, फ़िलहाल अभी तो नहीं हो रही, लेकिन अभी से ठीक एक डेढ़ आवर्स पहले, एक डेढ़ घंटा पहले जो है वो काफ़ी तेज़ तरार बारिश हुई है। और फ़िलहाल हम आपको लेके चलेंगे अगली जानकारी की ओर। श्रोतम, स्मार्ट सिटी धर्मशाला में पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथों पर वाहनों की पार्किंग की समस्या लगातार बनी हुई है। पशु चिकित्सालय धर्मशाला के बाहर भी वाहनों की मनमानी पार्किंग के कारण कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। चिकित्सालय के बाहर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ का उपयोग वाहन चालकों द्वारा पार्किंग के रूप में किया जा रहा है। फुटपाथ का बड़ा हिस्सा वाहनों की पार्किंग में उपयोग होने के कारण पैदल यात्रियों को कई बार सड़क पर जो है वो उतरना पड़ा है, और कई बार जो है वो कुछ ऐसे राइडर्स का सामना करना पड़ा है जिससे जो यात्री हैं वो बाल बाल बचे भी हैं। श्रोतों, ये हम सब बाखूबी जानते हैं कि किस तरह से आजकल के नौजवान जो है वो रफ़ राइडिंग करते हैं, किस तरह के आज के नौजवान जो है वो रैश राइडिंग करते हैं और कुछ भी आगे पीछे जो है वो नहीं देखते हैं। मान लीजिए वो कट ही मार रहे हैं और कट ना बजा हो तो इंसान तो फिर जाता बनाना, तो इसलिए क्योंकि बरसात है श्रोताओं, बरसात में इस तरह की रफ़ राइडिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, रैश राइडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अनधुन गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं, दो पहिया वाहन हो चाहे चार पहिया वाहन हो, उनकी गति सीमा जो है वो निर्धारित करें और उसी गति सीमा पर जो है वो ज़रूर चले। श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। और आइए जी जनाब, लेके चलेंगे आप सभी को, देखिए पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा जानकारियों का। फिलहाल आप सभी श्रोताओं ने हमारा दिल जो है वो चुरा लिया है।

श्रोतों, जानकारियाँ और गीत संगीत दोनों ही जब साथ चलते हैं तो कार्यक्रम का सुनने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है, कुछ अलग सी फील जो है वो आ जाती है। और ख़ासकर जब कार्यक्रम हो रेडियो गुंजन पर और आपने किया हो रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM ट्यून, मज़ा ही कुछ और है फिर। तो मैं हूँ सचिन कपूर, इस समय कार्यक्रम बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं आप मेरे साथ और हम आपके साथ। लेके चलते हैं अगली जानकारी की ओर। श्रोतों, एक महीने के बाद जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही सरकारी स्कूलों में बच्चों के पौष्टिक आहार को देखते हुए श्रोतों, पोषण से जुड़ी नई व्यवस्था पर लागू हो गई हैं, नई व्यवस्थाएं जो हैं वो लागू हो गई हैं श्रोतों। अब विद्यार्थियों को मिड डे मील के साथ सप्ताह में 2 दिन अतिरिक्त पौष्टिक आहार के रूप में अंडा अथवा फल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत सरकार ने ये व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। कांगड़ा ज़िला में 13 अगस्त को स्कूल खुलने के साथ ही श्रोतों इसे लागू कर दिया गया था। कांगड़ा के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बलविंदर गुलेरिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ज़िला के स्कूलों में बुधवार और शुक्रवार को बच्चों को अंडा अथवा फल उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 20 जुलाई को मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन उबला अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया था श्रोतों। इससे पहले ही अतिरिक्त पोषण आहार सप्ताह में 1 दिन दिया जा रहा था श्रोतों, यानी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही व्यवस्था पर बदलाव का फैसला किया गया और अब स्कूल खुलने के बाद इसका लाभ बच्चों को मिलना शुरू हो गया है श्रोतों। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत दिए जाने वाले अंडा या फल प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी PM पोषण के नियमित भोजन के अतिरिक्त है श्रोतों। PM पोषण, जिसे पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, उसके तहत प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए प्रतिदिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का पोषण मानक जो है वो निर्धारित किया है श्रोतों। तो बच्चों में अब बच्चों, अगर आप भी ये जानकारी सुन रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कि आपको हफ्ते में 2 बार मिलेगा अतिरिक्त पोषण। जी बिल्कुल, अव्यवस्था को सप्ताह में 2 दिन किए जाने से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित भोजन के अलावा सप्ताह में 2 बार जो है वो अतिरिक्त पोषण मिलेगा, अंडा और फल। चलिए, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। लेके चलते हैं और ये जानकारी श्रोतो, ये थोड़े से आंकड़े जो हैं और ये जो जानकारी है ये वाकई में ही थोड़ी सी घबराहट सी जो है वो हो रही है इस समय मुझे ये जानकारी पढ़ते समय। आत्महत्या करने वाले विवाहित जोड़े जो हैं वो ज़्यादा हैं श्रोतो। शब्द भी नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह से इस जानकारी को आप तक बयां करूं, साझा करूं। कहते हैं ना कि शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, तो कोई तो इतना पछता रहा है जो आत्महत्या कर ले रहा है श्रोतों, सुसाइड कर ले रहा है। जी बिल्कुल, देश में आत्महत्या की स्थिति को लेकर जो है वो सामने आए आंकड़े जो है वो एक चिंता का विषय हैं और चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं श्रोतों। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के अनुसार मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 के दौरान कुल 814 आत्महत्या दर्ज की गई हैं श्रोतों। इनमें 530 विवाहित और 270 अविवाहित और 8 अन्य श्रेणी के मामले जो हैं वो शामिल हैं और सामने आए हैं श्रोतों। आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वाले वालों में पुरुष की संख्या महिलाओं से काफ़ी अधिक रही। प्रदेश के 813 मामलों में 564 पुरुष और 250 मामले जो हैं वो महिला के हैं श्रोतों। अविवाहित वर्गों में 200 पुरुष और लगभग 70 महिलाएं, जबकि विवाहित वर्ग में जो है वो 355 पुरुष और 175 महिलाएं थी श्रोतों। 8 अन्य मामलों में 3 वर्ष और 5 महिलाएं शामिल हैं श्रोतों, 3 पुरुष और 5 महिलाएं माफ़ करें शामिल हैं। इस तरह प्रदेश में आत्महत्या करने वाले में करीब 66% विवाहित थे। 2024 में देश भर में सुसाइड के कुल आंकड़े जो हैं वो मैं सच में नहीं बयां करूंगा, लेकिन श्रोतों आप सोचिए कि 66% जो हैं वो विवाहित जोड़े हैं। तो अब इस पर तो मैं भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा श्रोतों, है ना। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ज़रूर जो है वो साझा करूँगा, एक छोटी सी बात जो है वो ज़रूर बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तब ये कारण होते हैं आपकी और आपके परिवार की आपस में उस तरह का तालमेल नहीं होता, तो फिर ये कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो सही हैं। तो उसके लिए

अपनी ईगो को साइड रखिए, उसके लिए अपनी अपने अहंकार को जो है वो साइड रखिए और फिर रिश्ते निभाइए। कहते हैं ना कि अगर रिश्ते झुकने से, अगर झुकने से रिश्ते आपके सुधर जाते हैं, अगर झुकने से रिश्ते आपके सुधर जाते हैं तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाइए, तो फिर रुक जाइए। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, शोतों कसम खा के कहो दिल है तुम्हारा मूवी से लिया गया यह गीत है। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना आपके अपने वीडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी हमारे साथ बिल्कुल बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और अगली जानकारियों के साथ आप सभी को रूबरू करवाएंगे। श्रोतों सड़क हादसे में दो पुलिस कर्मियों की जो है वो मौत हुई है। श्रोतों शिमला में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में हिमाचल प्रदेश पुलिस के दो जवानों की मौत जो है वो हो गई है। ये दुर्घटना हुई है श्रोतों और सड़क पर हुई, तभी कहते हैं ना कि आप मानोगे नहीं, एक कार और टैंकर के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। श्रोतों पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना कार और टैंकर के बीच हुई। टक्कर इतनी जोर से लगी, इतनी जोर की थी कि कार में सवार दोनों पुलिस कर्मी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और साथ ही साथ मृतकों की पहचान मैं बताना चाहता हूँ, हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार के रूप में जो है वो हुई है। दोनों शिमला ज़िला के रहने वाले थे और पुलिस लाइन में जो है वो तैनात थे। श्रोतों हादसे के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाए गए लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। श्रोताओं दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। टक्कर के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही कुछ समय तक प्रभावित रही। बाद में पुलिस ने यातायात को सामान्य कराया। पुलिस ने जो है वो दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। श्रोतों शुरुआती स्तर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, जांच के बाद ही दुर्घटना की वजह सामने आ सकेगी। श्रोतों दो पुलिस जवानों की मौत की खबर से पुलिस विभाग में शोक की लहर जो है वो बिल्कुल दौड़ी हुई है। श्रोतों दोनों जवानों के निधन पर उनके सहकर्मियों और अधिकारियों ने गहरा दुख जो है वो व्यक्त किया। श्रोतों पुलिस विभाग की ओर से भी मामलों की विस्तृत जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो जानकारियों का सिलसिला जनाब यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं समय आर से सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने रेडियो सेट पर।

साहिबा को सुनाने के चक्कर में हमारा स्पीकर जो है वो ऑन रह गया। श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: लेके चलते हैं और सुनाएंगे आप सभी को प्यारे प्यारे से गीत, इसी प्रकार से सुनाते जाएंगे श्रोताओं। मौसम विभाग से जुड़ी ये जानकारी है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और साथ ही साथ बताना चाहते हैं श्रोताओं कि मौसम काफ़ी ख़राब जो है वो रहने वाला है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बहुत ज़रूरी है सतर्क और सावधान रहना। जी, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, हंसी मजाक जो है डेट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ और जो होने भी चाहिए श्रोताओं पे। बिना हंसी मजाक के जो है वो ज़िंदगी बेहतरीन नहीं चलती है ना जी। अगर ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है श्रोताओं तो हंसी मजाक करना ज़रूरी है, हंसते रहना ज़रूरी है। आपको अगर अपने माइंड को फ्रेश रखना है तो हंसते रहना ज़रूरी है, मजाक करते रहना ज़रूरी है, तभी आप अपने माइंड को फ्रेश और ख़ुद को एनर्जेटिक जो है वो रख पाओगे। अगर ख़ुद को एनर्जेटिक रखना है तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ एक चीज़ों को लेकर हंसते रहिए ना, कुछ एक बातों को लेकर मुस्कुराते रहिए, ज़रूरी भी है। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को इस जानकारी की ओर श्रोताओं। भारी बारिश का अलर्ट और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। बताना चाहूँगा श्रोताओं, प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से जो है वो अपने तेवर दिखाने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बात करूँ तो अगले 5 दिन जो है वो झमाझम बारिश के हिस्सों में होगी प्रदेश के। जी बिल्कुल, भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। 19, 20 और 21 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जो है वो रहेगा श्रोताओं। 22 और 23 अगस्त को किसी तरह की चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगर मैं बात करूं श्रोताओं तो 18 अगस्त यानी कि आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तरार बारिश हुई धर्मशाला में, जैसे कि हमने देखा श्रोताओं। और बताना चाहता हूँ श्रोताओं कि 20 और 21 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर जो है वो बारिश ज़रूर होगी लेकिन अलर्ट कोई जारी नहीं है श्रोताओं। तो 21 अगस्त तक जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। प्रदेश के निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो 21 अगस्त के बीच मतलब 19, 20 और 21 कहीं कहीं जो है वो बिजली चमक भी सकती है, तेज़ हवाएं चल भी सकती हैं। भारी बारिश के दौरान श्रोताओं संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन और मलबा गिरना जो है वो आम बात है, जिससे खतरा जो है वो बढ़ सकता है श्रोताओं। निचले इलाकों में अचानक पानी बढ़ने और छोटी नदियों व नालों के उफान पर आने की भी जो है वो आशंका जताई जा रही है श्रोताओं। तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। और पहाड़ी इलाका है तो आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी खिसकेगी, भूस्खलन होगा, लैंडस्लाइड होगी, तो उन एरियाज में जो है वो ना जाइएगा, नदी नालों के साइड ना जाइएगा। इन्हीं बातों का खास ख्याल जो है वो ज़रूर रखिए श्रोताओं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, इस नाचीज के साथ, और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला रेडी गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। तो श्रोताओं, अब वक्त हो गया है समाचारों का।
1: '26 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया 2 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय

0: अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCI जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा, विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जन मुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने देश भर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। गोवा में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ा।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अंतराल और खबरों के बाद लेके चलते हैं आप सभी को सीधे इस गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.6 दो मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं सचिन कपूर आप सभी के साथ आप सभी के वीडियो सेट पर। श्रोतों, कभी कभी ना जिंदगी जो है वो कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, है ना, और कभी कभी बहुत सारे तजुर्बे जो है वो देकर जाती है। श्रोतों, बहरहाल हम आप तक पहुंचाएंगे ये जानकारी, बने रहेगा वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड शिमला तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से इसराइल में होम वेस्ट के 200 पदों में जो है केयर गिवर, जी बिल्कुल, होम वेस्ट केयर गिवर के 200 पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। श्रोतों, उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को ने इजरायली वेतनमान के अनुसार जो है वो वेतन प्रदान किया जाएगा, जो वर्तमान दर है, जो वर्तमान विनिमय दर के अनुसार जो है वो लगभग 1,99,770 रुपये प्रति माह के बराबर है। ज़िला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती के लिए आवेदक के पास जो है वो नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, नर्स असिस्टेंट और अथवा डिप्लोमा जो है, इनका डिप्लोमा जो है वो होना अनिवार्य है। ये डिप्लोमा संबंधित भारतीय प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त एवं आधिकारिक प्रशिक्षण प्रदाता से प्राप्त होना चाहिए। श्रोतों, तो आप सभी बिल्कुल जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित गूगल फॉर्म https://docs.google.com पर जा सकते हैं। श्रोतों, इसके माध्यम से पंजीकरण करवाने का आह्वान किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया एवं पात्रता संबंधित अधिक जानकारी के लिए जो है वो इच्छुक उम्मीदवार जिला रोजगार कार्यालय धर्मशाला के दूरभाष नंबर 01892224892 पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से मैं आप तक पहुंचाता हूं श्रोतों, 01892224892 पर आप कॉल कर सकते हैं। जानकारियों का सिलसिला और पिटारा यूं ही चलता रहेगा, लेकिन चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर। हाँ, ये गीत आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोताओं। जितने भी श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सभी वेडी गुंजन धर्मशाला जो है वो सुन रहे हैं श्रोताओं, लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को। गीत संगीत भी जो है वो हिस्सा है श्रोताओं जिंदगी का, है ना, और साथ साथ चलते रहें, जानकारियां भी चलती रहें और साथ साथ गीत संगीत जो है वो ये भी चलते रहें श्रोताओं, तो मज़ा कुछ अलग और बेहतरीन हो जाता है। और श्रोतों, कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं, जी बिल्कुल।

वाकई में नशे तो अपने होते हैं और ये अपने ही हैं जो साथ रहते हैं, शोतों साथ खड़े रहते हैं, साथ देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शोतों, बहुत कम लोग भी होते हैं जो आपका साथ दें, आपके साथ खड़े रहें, खुशियों में खड़े रहें। और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो आपका साथ ना दें, है ना। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जो आपका साथ दे रहा है वही आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा इंसान है और आपका अपना है। बहरहाल श्रोताओं, कांगड़ा ज़िला की एक बहुत ही खूबसूरत सी ये जानकारी आप तक मैं पहुँचाऊँगा। खूबसूरत इसलिए क्योंकि पति की शहादत के बाद भी जो है वो नहीं टूटा हौसला, अफसर बनी पत्नी श्रोताओं। कांगड़ा ज़िला के उपमंडल फतेहपुर के कुटलाहरा गाँव की ये बात है श्रोताओं। वीर नारी कल्पना दीवान की ये बात है, अपने साहस, दृढ़ संकल्प और मेहनत की मिसाल पेश करते हुए जो है वो एसएससी, जी बिल्कुल एसएससी में इन टी 124 एंट्री के बाद जो है वो एसएसबी सफलतापूर्वक पास कर ली है श्रोताओं। उन्होंने वीर नारी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है श्रोताओं। जी बिल्कुल, अक्टूबर में उनका सैन्य प्रशिक्षण शुरू होगा। कल्पना के पति मेजर अंकित दीवान अप्रैल 2025 में कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात रहते हुए देश की सेवा करते हुए वीर गति को जो है वो प्राप्त हुए थे श्रोताओं। पति की शहादत के बाद जीवन में आए इस कठिन दौर में कल्पना ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उनके हौसले जो है वो और बुलंद हो गए श्रोताओं, और देश सेवा करने का संकल्प जो है वो उन्होंने लिया और वो पूरा भी किया। कल्पना दीवान को रेडियो गुंजन की पूरी टीम की ओर से जो है वो बिल्कुल सल्यूट बनता है और बिल्कुल सल्यूट है श्रोताओं। हम अक्सर सोचते हैं कि कठिन परिस्थितियां जो है वो इंसान को हरा देती हैं, लेकिन वहीं पर इंसान जो है वो मजबूत होता है श्रोताओं। कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले भी हमें लेने पड़ते हैं जो कठिन रहते हैं। कई बार ज़िंदगी का रुख जो है वो भी चेंज हो जाता है, कई बार ज़िंदगी का पन्ना जो है वो पलटना ज़रूरी हो जाता है श्रोताओं, और बहुत सारी बातें जो हैं वो ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन होता है ना कि ज़िंदगी में परेशानी आती हैं, दुख आते हैं, लेकिन इन परेशानी और इन दुखों में जो है वो हारना नहीं है जी। इन दुखों में, इन परेशानियों में अगर हम हारते हैं तो फिर हम हार ही जाते हैं। इसलिए हमारी बहुत सारी बहनों को जो है वो कल्पना दीवान जैसी बनने की बहुत ज़रूरी है, और इवन की बहनों को नहीं, भाइयों को भी। हम अक्सर लड़के जो हैं वो श्रोताओं हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कोई प्यार में टूट रहा है, कोई परिवार में टूट रहा है, कोई जॉब में सफलता नहीं मिल रही वहाँ टूट रहा है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार जो है वो अपनी आस मत छोड़िए श्रोताओं, सब कुछ जो है वो ज़रूर मिलता है। बरहाल लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

0: ジョーカル。
1: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोतो आप वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, वापस मिलते हैं अंतराल के बाद। यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला। गूंज अपने पन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल की।
3: जीवन उसकी पानी
2: उसका।
3: पापा पापा, दूध उबल रही है।
4: उबल रहा है, रहा।
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
3: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
2: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
4: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
3: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मतलब बोलने का पावर दिया है। आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे,
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
14: वही असली तरक्की।
13: एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। 7:45 हो गए हैं और श्रोतवा वक्त हो गया वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
16: और प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, सिरमौर में भूस्खलन से 3 की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होगा। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान के साथ पहले दौर की चर्चा पूरी हो गई है और दूसरे दौर की चर्चा के बाद मंजूरी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कहा कि इस बार सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल पूछेगा। उन्होंने भाजपा नेताओं, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सलाह दी कि वे हिमाचल हित में कभी परमाणु से नीचे भी जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनकी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा।
17: देखिए, कैबिनेट की एक प्रीलिम्स डिस्कशन तो हो ही गई है, अब दूसरी डिस्कशन होनी बाकी है। अब जैसे ही हाई कमांड से अभी बात हो जाए, दूसरे स्तर की जो बात होगी, तो उसके बाद ही ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। मेरा मानना है कि जल्दी ही कैबिनेट एक्सपेंशन कर दिया जाएगा। जयराम ठाकुर जी के समय मानसून सत्र कभी 10 दिन का सुना था? नहीं सुना था। हमने 10 दिन का सत्र रखा है, बीजेपी कहेगी तो और बढ़ा दें। लेकिन मुद्दों पर बात करें, इस मानसून सत्र में सरकार ने सवाल पूछने उनसे, वो तो करते ही कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ आएंगे, वॉकआउट करेंगे, जोर जोर नारे लगाएंगे, बैल में घुस जाएंगे।
16: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है। मुख्यमंत्री आज मंडी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवरी के नवनिर्मित भवन में कक्षाएं संचालित होने के अवसर पर आयोजित समारोह को शिमला से वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस स्कूल का भवन 14 अगस्त 2023 को भारी बारिश में पूरी तरह बह गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी का स्कूल के बच्चों के लिए दिया गया संदेश पढ़ा। प्रदेश भाजपा ने आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का कैडर घटाने के प्रदेश सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आज कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकारियों का कैडर घटाने का ऐलान जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर मुख्यमंत्री अपने आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का विफल प्रयास कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से अफसरों में घुटन का माहौल है और वे मजबूरी में हिमाचल छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश विधानमंडल भवन रंग बिरंगी रोशनियों से सराबोर दिखेगा। उन्होंने आज शिमला में कहा कि पहाड़ों की रानी शिमला में रंग बिरंगी रोशनी से नहाए इस भवन की सुंदरता की ओर हर कोई आकर्षित होगा। उन्होंने कहा कि काउंसिल चैम्बर एक बहुमूल्य धरोहर है जिसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और इस कार्य से जुड़े अन्य विभागों को सत्र से एक दिन पूर्व सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए ताकि मॉनसून सत्र के दौरान कोई अव्यवस्था ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सचिवालय मॉनसून सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न सड़क व अधोसंरचना कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सेब सीजन के दृष्टिगत सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करें ताकि बागवानों और किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि संस्कृत के विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के दुनिया भर में मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। राजेश धर्माणी आज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ शैक्षणिक, बौद्धिक और व्यक्तित्व विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। धर्माणी ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन और ज्ञान विज्ञान की समृद्ध भाषा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को गहराई से समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक सुधीर शर्मा ने विजिलेंस द्वारा उनसे की गई पूछताछ को प्रदेश सरकार की राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में विजिलेंस द्वारा आज उनसे की गई पूछताछ के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार FIR और जांच के नाम पर विपक्ष की आवाज को दबा रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने विजिलेंस द्वारा पूछे गए अधिकांश सवालों का जवाब दे दिया है और मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने विजिलेंस की इस कार्रवाई को सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया और कहा कि प्रदेश की राजनीति में इस कार्रवाई के दूरगामी परिणाम होंगे।
10: आज विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उसमें से अधिकांश के जवाब आज दे दिए हैं और कुछ के जो दस्तावेज चाहिए वो आगे जो है उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ऐसा मैंने उनको कहा है। सरेआम दिख रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसके जो मुखिया हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको अपने अंदर ये एक भावना आ गई है कि मैं अब अमर हो गया हूँ इस कुर्सी पर और जो है वो दबाव की राजनीति, FIR करके डराना धमकाना, लेकिन उससे विपक्ष की आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो तो हम उठाते ही रहेंगे और ये एक तरह से उनसे ध्यान भटकाना है क्योंकि सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब चाहती है कि इस तरह के मुद्दों की तरफ जो है वो जनता का ध्यान केंद्रित रहे।
16: प्रदेश में हो रही मॉनसून की भारी वर्षा से कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सिरमौर जिला की शिलाई तहसील के कफोटा के निकट माइनिंग एरिया में आज साय हुए भूस्खलन में 3 मजदूरों की मौत हो गई। सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतकों में 2 लोग नेपाली मूल के और एक स्थानीय व्यक्ति है। मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी है। उधर नाहन विधानसभा क्षेत्र के मातर स्कूल में फंसे 52 विद्यार्थियों और स्टाफ के 12 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सोलन जिला में जाबली के समीप कोटी में भूस्खलन के कारण शिमला कालका रेल लाइन पर रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ओल्ड कसौली रोड पर टकसाल फाटक के पास जलभराव हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित है। भारी बारिश, भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाओं के चलते प्रदेश में 88 सड़कें, 19 पेयजल योजनाएं और बिजली के 12 ट्रांसफार्मर बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट है।
18: आज 18 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक हमारे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। आज स्पेशली आज 18 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू यहाँ के लिए संभावना है कि आज एक दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में आज ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। जो हमारे क्षेत्र है मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद 19 अगस्त से जो वेदर की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आएगी।
16: शिमला पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ किए जा रहे विशेष अभियान में 2 अलग अलग मामलों में 2 अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें विजय कुमार और शुभ करमन सिंह शामिल हैं। शिमला की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पंवर ने बताया कि जांच में पाया गया है कि ये दोनों ड्रग तस्कर आपस में संपर्क करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे।
19: हम हर दिन पूरी मेहनत कर रहे हैं, भारी मात्रा में सप्लाई को रोका जा रहा है और सप्लाई नेटवर्क्स को तोड़ने पर पूर्णतः काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम डिमांड रिडक्शन पे भी काम कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को अवेयर करके पंचायत में जाकर, जो भी अफेक्टेड पंचायत है वहां पर जाकर हमारे सारे ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम हिमाचल को चिट्टा मुक्त करें।
16: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सरकार मॉनसून सत्र के लिए पूरी तरह तैयार। मंडी के बहुचर्चित देवरी स्कूल भवन का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल किया लोकार्पण, विद्यार्थियों को बरसात में मिली छत। भाजपा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कैडर कम करने को बताया प्रदेश सरकार की विफलता। विधायक सुधीर शर्मा ने विजिलेंस जाँच को बताया सरकार की राजनीतिक बदली की भावना से की गई कार्रवाई। और प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, सिरमौर में भूस्खलन से 3 की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
15: श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, वक्त हो गया है इस नाचीज से अलविदा, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कभी अलविदा ना कहना। मिलते हैं कल फिर श्रोताओं। फिलहाल इस नाचीज को दीजिए, सचिन कपूर को दीजिए आप इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, प्रकृति का ख्याल ज़रूर रखें और नशों से दूर जरूर रहे। श्रोतों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ।

0: उबल रहा है। रहा
1: चंदू के चाचा, चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रूम से चटनी चटा
2: छताई।
1: ओहो दादू, इसके फूल कब आएगी? कब आएगा?
3: बेटा खाया नहीं, खाई।
1: ओके ओके
4: गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
0: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
1: वो तो आ गई।
4: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मतलब बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
4: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
5: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
6: मामा, नो शेयरिंग।
5: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
6: कौन था?
5: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
6: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
5: स्मार्ट गर्ल।
6: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
5: याद है ना, नो शेयरिंग।
6: मामा,
7: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
8: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
9: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
12: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
12: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
13: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी थी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत था, आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: अरे नहीं,

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
4: चटाई?
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
9: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।